92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तू अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: टेस्ट चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट
2: टेस्टिंग टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
3: टेस्टिंग
4: टेस्ट
2: टेस्ट
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
8: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
11: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
12: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है, जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

इक्यानवे दशमलव 2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। ऑटोइम्यून असंतुलन से बच्चों में टाइप 1 मधुमेह का खतरा। हिमकेयर की जगह अब इंश्योरेंस स्कीम मरीजों को मिल सकेगा कैशलेस उपचार। अपना परिवार सुखी परिवार योजना में 6 अगस्त से प्रदेश भर में जनसंवाद। प्रदेश के 25 शिक्षकों को मिलेगा राज्य पुरस्कार, आवेदन 8 अगस्त तक। स्कूली विद्यार्थी पढ़ेंगे हिमाचल का इतिहास और परम्पराएं। कचरा निपटान के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे डीसी, प्रदूषण बोर्ड करेगा निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक अजय पराशर 29 वर्षों की सराहनीय सेवा के उपरांत संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए। जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय धर्मशाला में उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधवी पराशर एवं सुपुत्र अमृतेश पराशर भी उपस्थित रहे। कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके स्वस्थ एवं सुखद सेवानिवृत्ति जीवन की मंगल कामना की। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर के प्राचार्य डॉक्टर विश्वजीत, समस्त प्राध्यापकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया का महाविद्यालय में BBA, BCA व PGDCA पाठ्यक्रम शुरू करवाने पर हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। प्राचार्य डॉक्टर विश्वजीत ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर विधायक केवल सिंह पठानिया महाविद्यालय आए थे। उस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि कॉलेज में शीघ्र ही BBA, BCA और PGDCA की कक्षाएं शुरू करवाई जाएंगी। अब उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया, जिससे विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उनका कहना है कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए महाविद्यालय परिवार विधायक केवल सिंह पठानिया का हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से ये मांग पूरी हो सकी। ऑटो इम्यून सिस्टम के असंतुलन से 6 माह से 18 वर्ष तक की आयु तक टाइप 1 मधुमेह का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि ये लक्षण सभी बच्चों में दिखाई नहीं देते, लेकिन ऑटो इम्यून असंतुलन की वजह से कुछ बच्चों में टाइप 1 मधुमेह के लक्षण उभर आते हैं। यदि समय पर उपचार न कराया जाए तो इससे डायबिटिक किटोएटोसिस का खतरा पैदा हो जाता है। इस स्थिति में बच्चे तेज व गहरी सांस लेने, उल्टी पेट दर्द, अत्यधिक कमजोरी और बेहोशी जैसे विकारों की चपेट में आ जाते हैं। प्रदेश के अस्पतालों में 6 माह से 18 वर्ष के बच्चों में टाइप 1 मधुमेह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना की जगह नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए विभागीय स्तर पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले पात्र मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी दावाओं पर अंकुश लगाना है। प्रस्तावित योजना से में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि मरीजों की पर्ची में दर्ज लिखे गए टेस्ट और उपचार का डिजिटल स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। अपना परिवार सुखी परिवार योजना से प्रदेश में लगभग 1.78 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि इन अति निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में ये घोषणा की। सरकार अपना परिवार सुखी परिवार योजना में 6, 7 और 8 अगस्त को जनसंवाद कार्यक्रम करवाने जा रही है। कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर होंगे और इनकी अध्यक्षता विधायक करेंगे। इनका उद्देश्य अति निर्धन परिवारों के विकास और कल्याण के लिए योजनाओं पर व्यापक चर्चा करना है। जनसंवाद कार्यक्रमों के लिए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 10 ग्राम पंचायतें चिन्हित की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 25 शिक्षकों, मुख्याध्यापकों और प्रधानाचार्य को

वर्ष राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। पात्र शिक्षक 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पुरस्कार शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को प्रदान किए जाएंगे। इस बार नई राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना लागू की गई है। इसके तहत शिक्षकों के चयन में सीखने के परिणाम, नवाचार, स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और शिक्षा सुधार में योगदान जैसे मानकों को अधिक महत्व दिया जाएगा। प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को अब अपने राज्य के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, बोलियों और पारंपरिक व्यंजनों की विस्तृत जानकारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मिलेगी। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में 6 से 8 कक्षा के पुस्तकों में व्यापक बदलाव और सुधार पर चर्चा की गई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, स्थानीय बोलियां, पारंपरिक खानपान और समकालीन चुनौतियों से जुड़ी जानकारी भी विद्यार्थियों को दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल के प्रागैतिहासिक काल से लेकर राज्य गठन तक की यात्रा, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, कारगिल युद्ध के वीरों, सैनिकों और प्रदेश की विशिष्ट पहचान से जुड़े तथ्यों को रोचक ढंग से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1 से 8 कक्षा तक अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए मुफ्त वर्दी योजना के तहत 600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि उन्हें विद्यालय वर्दी खरीदने में आर्थिक सहायता मिल सके। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण विद्यालय वर्दी खरीदने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सहायता शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नादौन नगर परिषद क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश विपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अब कचरा निपटान की सीधी जवाबदेही संबंधित डिप्टी कमिश्नर डीसी की होगी। हाईकोर्ट ने डीसी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से डंपिंग साइट का भौतिक निरीक्षण कर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि पर्यावरण नियमों के पालन की पुष्टि हो सके। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में नए हिमबस प्लस कार की शुरुआत हो गई है। सोलन जिला के क्यारी घाट से प्रदेश मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने इस कार की विधिवत रूप से शुरुआत की। उनका कहना है कि हिमबस प्लस कार की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। ये स्मार्ट कार्ड एचआरटीसी की विभिन्न यात्रा रियायत योजनाएं एवं कार्डों के लाभों को एक ही कार्ड में समाहित करेगा। ये कार्ड मात्र 365 रुपए के वार्षिक सदस्यता शुल्क पर उपलब्ध होगा। उनका कहना है कि इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो तथा पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: चुके होंगे।
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट
3: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सब की तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
6: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है क्या मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती? अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज। तू ही लाया इसे।

नमस्कार सभी श्रोताओं को। हमारी प्यार भरी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

पशुधन साल का एक और महीना शुरू हो चुका है। आज है 1 अगस्त 2026 और आज वीकेंड भी है, मतलब वीकेंड की शुरुआत हो जाती है ना सैटरडे से, सैटरडे संडे। और साथ ही 1 अगस्त को और भी बहुत कुछ हुआ था जो कि इतिहास में दर्ज है, उसके बारे में भी कार्यक्रम में बात करेंगे। पिटारे में आज बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन बाहर देख रहे हो ना मौसम, कैसा मौसम है आज, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि ये पीछे मध्यम मध्यम सी ट्यून सुन रहे हैं आप। रिमझिम गिर रहा है सावन। जी हाँ, सावन का महीना वैसे बहुत पहले से शुरू हो गया है, लेकिन जो ज्योतिष हैं उनके अनुसार 30 तारीख से शुरू हुआ है। तो इस बार धर्मशाला में हमें लग रहा था कि बारिशें पहले की बनिस्बत थोड़ी सी कम हो रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बरसात ने ये बता दिया है कि सावधान रहो। और बरसात हमेशा अपने साथ कीचड़, पानी और तरह तरह की बीमारियां ये सब लेकर के नहीं आती हैं श्रोताओं। अभी अभी मुझे शशि ने एक बात बोली जिससे कि मुझे ये ध्यान आया कि ये भी आपके दिमाग में डाल दूं, यानी कि आपसे साझा करूं। वैसे आपको पता ही है, आप बड़े जागरूक हैं, कि बरसात अपने साथ चोरियां लेकर भी आती है। मतलब बरसात के दिनों में ही चोरियों का चलन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए अपने अपने जो कीमती सामान है उसकी सावधानी ज़रूर रखें। देखिए, मैंने कल ही एक वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे कि किसी ने अपने गहनों को टेडी बियर के अंदर छुपा करके रखा था, और पता नहीं किसी को कैसे पता चल गया कि उसने सारा जब छान मारा तो उसने उस गद्दे को ही हाथ लगाया, वो जो पिलो टाइप था, मतलब टेडी बियर जो बच्चों के होते हैं उसे ही फाड़ करके उसमें से वो सारा सोना निकाल के चले गए। तो बरसात के दिनों में अपनी सेहत के साथ साथ अपने माल का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई। और बरसात के ही दिनों में क्यों, हमेशा ही हमें सतर्क रहना चाहिए। तो मौसम बता देती हूँ आपको, मुझे तो गूगल बाबा वैसे 26 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं जो तापमान है।

में नमी 82% इस वक्त है। बाकी सड़कें तो जो हैं वो पानी, जो फ्लड आया था, फ्लड तो नहीं कह सकते हैं, जो पानी पहाड़ों से जब आता है बेलगाम होकर के, क्योंकि लोगों ने इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा कर दी हैं कहीं कहीं पर, मतलब अपने जगह बढ़ाने के चक्कर में अपने घरों के आसपास वो जो नालियाँ हैं ना उन्हें भी छोटा छोटा कर दिया है। बिल्कुल नहीं समझते हैं जब भारी बरसात होती है तो फिर पानी तो अपना रास्ता लेगा ही, कहीं ना कहीं जाएगा ही, तो वो सारा सड़कों पे आ जाता है। तो हमारी सीमेंटेड सड़कों में ही छेद हो गए हैं, सीमेंट कहीं कहीं से निकल गया है, तो बाकी सड़कों का क्या हाल होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। खैर, मौसम के बारे में आपको प्रादेशिक समाचारों में भी पता लग जाएगा, और कार्यक्रम में हम, अगर हमें समय मिलेगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम का पहला गीत, आप भी कहेंगे बातें बहुत करते हैं।

जी श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना अंदाज फिल्म का, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और आज का विचार लेते हैं। सफलता आपके मूड की मोहताज नहीं होती, वो आपके अनुशासन की दीवानी होती है। समझ गए ना आप ये दो लाइनें? कि भाई अगर आप चाहेंगे कि हम ये काम करेंगे मूड से, अपने मूड के अकॉर्डिंग, तो वैसा नहीं होगा, वैसे आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता तभी मिलती है जब हम बिना मूड के भी अपने कार्य रेगुलर करते रहें कि भाई हमें ये काम एक निश्चित समय पर करना है तो करना ही है, या अगर होता है कई बार हो जाता है इधर उधर समय, लेकिन जो कार्य एक दिन के लिए निर्धारित किया जाता है वो उस दिन हो जाना चाहिए। देखिए श्रोतो, मैं ना ज़्यादातर वो ही बात यहाँ से कहती हूँ जो खुद पर अप्लाई करती हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर हम खुद से वो चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कई बार कि हम नहीं देखते हैं और दूसरे सामने वाले को कह देते हैं, बड़ी बड़ी सलाहें देने लग जाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, फिर दो मिनट के लिए चुप हो जाते हैं कि अरे भाई हम तो खुद ये करते ही नहीं, सोचते तो है ना, मन में आता है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास शादी के कुछ कपड़े आए हुए हैं जिन्हें मैंने स्टिच करके देना है, और सच बता रही हूँ दिन में बिल्कुल समय नहीं मिलता है, तो आज का एक ज़रूरी था जिसे ट्राई करना था उस कस्टमर ने, तो रात को 2-2:30 बजे तक बैठ करके मैंने वो सूट कंप्लीट किया है। सुबह सुबह जा करके उनके घर पर छोड़ के आई हूँ कि आप ट्राई कर लीजिएगा और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा। तो देखिए ये छोटी छोटी स्टेप्स जब हम लेते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इससे मुझे सफलता मिल जाएगी, लेकिन इन स्टेप्स को ले ले करके छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे तो ही हमें जा कर के कहीं अपनी सफलता प्राप्त होगी और हम अपने कार्यों में थोड़ा बेहतर कर पाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अपनी गलतियों से सीख लेकर आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। किन्नौर के शिवकिला से भारत और तिब्बत के बीच 7 वर्षों के बाद आज फिर से व्यापार होगा शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले को बताया लोक संस्कृति व पुरानी परंपराओं का जीवंत प्रतीक। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊना शहर के पात्र 117 लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए मिलेगी 2,93,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, आज 3 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण व राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे युवाओं को अदालती कार्यवाही में घसीटने या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बनाने के बजाय समाज को उन्हें अपनाना चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे अपनी गलतियों से सीखने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। शांडिल ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए इन्हें तय समय में पूरी करने को भी कहा। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। किन्नौर के शिवकिला से भारत और तिब्बत के बीच 7 वर्षों बाद आज से व्यापार शुरू हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद बंद हुए व्यापार को बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगली पहले चरण में करीब 17 व्यापारियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नामग्या पंचायत के प्रधान ने कहा कि भारत और तिब्बत सीमा व्यापार से स्थानीय व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे।
2: प्रधान ग्राम पंचायत नामग्या, वर्ष 2019 में कोविड-19 महामारी के चलते हमारा जो ये इंडो चाइना ट्रेड का जो व्यापार चलता था वो इस बीमारी के कारण ये बंद हो गया था और अब ये पुनः शुरू होने जा रहा है और ये बड़ी हर्ष की बात है। हमारे लगभग 17 व्यापारी एक ट्रेड के लिए जा रहे हैं। भारत से लगभग 36 आइटम है जो हम ले जा सकते हैं।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जिले की लोक संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। कल शाम मेले की 6ठी सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि ये मेला जहां अपनी सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाता है, तो वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और कारोबारियों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित करता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत धर्मशाला थाना क्षेत्र में करीब 750 ग्राम चिट्टा के साथ पंजाब निवासी 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर ने बताया कि NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 माह के दौरान NDPS एक्ट के तहत 21 मामले दर्ज कर 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 8 बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। वीर बहादुर ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: साढ़े सात ग्राम हेरोइन चिट्टे के साथ पंजाब का रहने वाला 20 वर्षीय युवक है और इसमें इसको अरेस्ट किया गया है। फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जा रही है। जांच में ये सामने आया है कि ये जो चिट्टा हेरोइन है पंजाब से लाया गया था। पिछले एक महीने में 250 ग्राम से अधिक चिट्टा और करीब 2.5 किलो चरस विभिन्न मामलों में सीज करी गई है। एंटी ड्रग्स ये अभियान है। तो अभी पुलिस की जो कार्रवाई है चाहे वो थाना स्तर पर है चाहे हमारी सीए टीम है जो अवैध तस्करी करते हैं सेवन करते हैं उनके खिलाफ लगातार जारी और ये भविष्य में कार्रवाई आगे जारी रहेगी।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,411 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय

0: युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चरण 2 के तहत गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जा रही है। ऊना जिला में योजना के तहत पहले चरण में 117 पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने की मंजूरी दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ऊना नगर निगम क्षेत्र के पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नगर निगम के आयुक्त प्रतिपाल सिंह ने बताया कि योजना के प्रथम चरण के तहत 117 पात्र लाभार्थियों को पक्के मकानों का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन्हें कुल 2,93,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 2,50,000 रुपए की सहायता राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे पात्र परिवार यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है, उनकी वार्षिक आय 3,00,000 रुपए तक है तथा उनके नाम शहरी क्षेत्र में स्वयं की भूमि उपलब्ध है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: लाहौल स्पीति जिले में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजाति मेले में इस बार व्यापारियों और पर्यटकों के लिए बड़ी राहत दी गई है। उपायुक्त व जनजातीय मेला समिति की अध्यक्ष किरण बड्डाना ने कहा कि पुलिस ग्राउंड केलंग में लगाए जाने वाले सभी व्यापारिक स्टॉल अब केवल 14 से 16 अगस्त तक ही नहीं बल्कि 24 अगस्त तक संचालित रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि ये निर्णय दूर दराज क्षेत्रों और देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले व्यापारियों, हस्तशिल्पियों व उद्यमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। वहीं विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से बंद पड़ी कई सड़कों को खोलने का कार्य भी जारी है। इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग ने 500 से अधिक मशीनरी तैनात की है। मौसम विभाग ने आज 3 जिलों चंबा, कांगड़ा व मंडी में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों व मौसम संबंधी चेतावनी का पालन करने की सलाह दी है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मॉनसून सत्र से पहले सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। दैनिक भास्कर की एक खबर है, 6 साल बाद आज से शुरू होगा शिपकिला से तिब्बत व्यापार। मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है, मौसम ने ली डॉक्टर समेत 3 की जान, मनाली में बादल फटने से बागीचे बहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अपनी गलतियों से सीख लेकर आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। किन्नौर के शिपकिला से भारत और तिब्बत के बीच 7 वर्षों के बाद आज से फिर व्यापार होगा शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले को बताया लोक संस्कृति व पुरानी परंपराओं का जीवंत प्रतीक। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊना शहर के पात्र 117 लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए मिलेगी 2,93,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, आज 3 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब समाचारों के बाद आप सभी के लिए ये गीत हम आक्रोश फिल्म का प्ले कर रहे हैं, अनुपम आमोद की आवाज़ है।

पहली अगस्त है दोस्तों आज, और पहली अगस्त के इतिहास पे अगर हम थोड़ी सी नज़र डाल लें तो कैसा रहेगा। तो भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थरों का प्रतीक है पहली अगस्त, विशेष रूप से 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और 1831 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। डॉक्टर एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोग को औपचारिक रूप दिया था 1916 में। में स्वतंत्रता से कुछ सप्ताह पहले भारत पाकिस्तान की अंतिम सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग के प्रोटोकॉल में तेजी लाई गई थी। में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया जिससे कि आधिकारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था।

1953 में भारत ने एयर कॉरपोरेशन अधिनियम के तहत अपने घरेलू विमानन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया और मौजूदा निजी एयरलाइंस का इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में विलय कर दिया। 2010 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना की थी। NGT वही कंपनी है जो कि आपको पता है ना, जो पेड़ वगैरह के बारे में बहुत सोचती है कि संरक्षित करती है उसे और कहां पर क्या करना है वो निर्धारित करती है। '99 में कमला नेहरू स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, उनका जन्म हुआ था। और 1932 में हिंदी सिनेमा की दिग्गज त्रासदी अभिनेत्री मीना कुमारी का निधन हो गया था। तो ये थे कुछ प्रमुख बातें जो इतिहास में घटी थी, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जिस पर बात हमें करनी है आज ही के दिन। जी ज़रूर करेंगे कार्यक्रम में। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं एक गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ये गीत आपने सुना बरसात फिल्म से। तो अब आ जाते हैं हम आज के दिवस पर। आपको पता है आज क्या क्या है? आज असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी हमारे देश में। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में।

भारत का ऐसा पहला आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस आंदोलन की शुरुआत वाले दिन ही महान नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। पूरे देश में शोक की लहर थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इस दुख को एक शक्ति में बदल दिया। आंदोलन को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। और दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, वो ऐतिहासिक बात थी कि उस जमाने में इस फंड का लक्ष्य 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था। उस जमाने में कि 1 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी तब। तो भारत की जनता ने अपने गहने, जमा पूंजी और जो कुछ भी था, अपने से बन पा रहा था, वो सब कुछ दान कर दिया था गांधी जी की एक आवाज पर। और तय समय से पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा का फंड जो है वो इकट्ठा हो गया था। ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा संदेश था कि पूरा भारत अब एक हो चुका।

जी तो शहीद फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला से हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त से।

तो दोस्तों, आज की तारीख कैलेंडर का पन्ना या सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे देश के इतिहास का वो पन्ना है जहां से आजादी की एक नई इबारत लिखी गई। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने कि हर हिंदुस्तानी को एक धागे में पिरो दिया था।

और दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है तो हमारे देश के युवाओं ने भी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन में भी हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे और वकीलों ने अदालतें छोड़ दी थी। और आज का युवा भी देश को आगे ले जाने के लिए तैयार है। आज के युवा की शक्ति तो आप लोगों ने देख ही ली। हाल फिलहाल ही के दिनों में हमने बहुत सारी बातें की हैं उसके बारे में, आज के कार्यक्रम में नहीं, क्योंकि बहुत सारा कुछ है अभी आपसे बात करने के लिए। खैर, हमारे युवा हैं तो हम हैं, हमारा देश है, और हमारे देश का जो भविष्य है वो भी युवाओं के कंधों पर ही टिका हुआ है।

श्रोताओं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ बने हुए हैं आप और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और ये तमन्ना हर किसी के दिल में होनी चाहिए, ये नहीं कि जो क्रांतिकारी थे उन्हीं के दिल में ये तमन्ना थी और अब जो हम लोग हैं हम बस आज़ाद हैं तो हम ये सोच करके बैठे रहें कि हम अपनी आज़ादी का अनुचित फ़ायदा भी उठाते रहें और देश के खिलाफ काम भी करते रहें और फिर हम सोचें कि नहीं जी उसके बावजूद भी हमें आज़ादी चाहिए, जैसा कि हुआ है अभी और समय समय पर बीच बीच में होता ही रहता है। समझदार हैं आप लोग, समझ गए होंगे इशारा और ज़्यादा इस पर नहीं बोलेंगे आज, क्योंकि एक और दिवस है वर्ल्ड वाइड वेब डे www। जी हाँ, आ गया समझ आपको, www.com जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब का मतलब पता है ना आपको, तो वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला। जी हाँ, जाला बड़ा अच्छे से बुनती है ना वो, तो ऐसे ही हमारे इस पूरे संसार में भी जाल बना हुआ है, वो है नेट का, इंटरनेट का। तो दोस्तों, जहां हम 1 अगस्त के इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं वहीं पर आज बहुत ही स्मार्ट और हाईटेक दिन है, जैसे कि हमने आपको बताया वर्ल्ड वाइड वेब डे।

और हमें किसी भी साइट को खोलना हो तो हम सबसे पहले www से उसे टाइप करते हैं और फिर उसे खोलते हैं। आज हम और आप जो रील्स देख रहे हैं ना, बिना मिले दोस्तों से चैट कर रहे हैं, घर बैठे दुनिया जहान की खबरें पढ़ रहे हैं, इस सब की शुरुआत आज ही के दिन से जुड़ी है। तो आज का ये दिन डिजिटल दुनिया के नाम समर्पित है।

अब आप कहेंगे कि इसकी तो जो यूज़ है वो युवा ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, मान लेती हूँ मैं कि युवा करते हैं ज़्यादा, लेकिन अगर आप भी सीखना चाहें तो ज़रूर आप भी सीख सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं उस काम को तो वो बड़ा आसान लगने लगता है। जैसे कि मैं मैथ्स में बड़ी कमज़ोर थी, और उसके बाद पता है क्या हुआ, जब मैंने टेंथ पास कर ली ना, टेंथ तक मुझे लगता था कि भैया आगे तो अब भाई मैं मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं रखने वाली हूँ। आगे तो मैंने साइंस रखी थी मेडिकल, और फिर मैं उसमें मेरा मैथमेटिक्स से पीछा छूट जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ज़िंदगी भर मैथ से यानी गणित से हमारा पीछा नहीं छूटता है। घर के कामकाज में किसी का बिल चुकाना है, कुछ करना है, तो वो साथ हमेशा ही चलता है। फिर उसके बाद पता है आपको क्या हुआ, उसी सब्जेक्ट में मैंने बच्चों की ट्यूशन्स ली, उन्हें पढ़ाया, और तब मुझे लगने लगा कि अरे मैथ्स तो बहुत ईजी था, मैं तब क्या करती थी। असहयोग आंदोलन के लिए हमने युवाओं के बारे में बात की ना, तो यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगी कि चाहे युवा हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर से कहूँगी कि अगर उस दौर की बातें चलती हैं ना, जब और देश पे कोई चीज़ आ जाती है, संकट आ जाता है, या अपनी कोई डिमांड्स मनवानी होती हैं, कुछ कहना होता है, प्रशासन तक बात पहुंचानी होती है, तो सब संगठित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आज़ादी हमें बहुत आसानी से नहीं मिली है, आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों से मिली है। और उस समय ये गीत बनाया गया था जिससे कि हमारे बच्चे हमेशा ये याद रखें कि किस तरह से हम आज के हालातों में पहुँचे हैं, और हमें वापस वहाँ पर नहीं पहुँचना जहाँ से हम निकल के आए हैं। आइए सुनते हैं ये गीत, जागृति फिल्म का ये गीत है।

कैसा लगा शूट हूँ आपको ये गीत, जागृति फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में। पर इसमें जो कहा गया वही मैंने आपको पहले नरेट किया था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यहाँ पर युवाओं को या बच्चों को एक संदेश दिया गया है कि कितनी मुश्किलों से आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को हमें ऐसे ही नहीं जाने

और अब इस आज़ादी को लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी और पता नहीं नारों में आज़ादी और कितनी आज़ादी, क्या किस किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। आज का सिनेरियो कुछ बदला हुआ सा नज़र आता है। खैर कोई बात नहीं, जब वो भी अपनी उम्र से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ये युवा, तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा पीछे जा कर के कि हमने क्या किया था। जैसे कि मुझे समझ में आ गया था ना कि मैथ्स जो है वो आसान होता है, मुश्किल नहीं। तो शुरू हम बात कर रहे थे इंटरनेट नहीं, www की बात कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग समझते हैं कि इंटरनेट और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक ही चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट तो केवल कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक रास्ता है, नेटवर्क है, लेकिन उस रास्ते पर जो जानकारियाँ, तस्वीरें और वेबसाइट्स तैर रही होती हैं ना, वो हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि उस मकड़ी के जाल में जो आपको नज़र आता है, जो हम जैसे हमें देखते हैं सोशल मीडिया पे, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ पानी, वहाँ बादल फटा, ऐसा हुआ, ये सब वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए ही आप देख पाते हैं। और इतनी उलझी हुई दुनिया है ना, फिर भी कितने सुलझ करके हमारे सामने आती है। और इस दुनिया को साल 1999 में टिम बर्नर्स-ली नाम के एक महान वैज्ञानिक ने बनाया था। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने तो इसे सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वैज्ञानिक आपस में आसानी से डेटा शेयर कर सके, पर उन्हें क्या पता था कि इस एक दिन इस पर लोग मीम्स शेयर करने लग जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट साल 1991 में लाइव हुई थी, और कमाल की बात यह है कि वो वेबसाइट आज भी इंटरनेट पे मौजूद है और उस पर कोई फोटो या वीडियो नहीं है, बस सादा सा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। और वो क्या है भाई, हम क्यों बताएं? थोड़ी सी सर्च आप भी तो कीजिए ना कि दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट जो 1991 में लाइव हुई थी वो कौन सी है, आपको दिख जाएगा।

शूरवीर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और कविता, मोहम्मद अज़ीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओ, हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमको ना भुलाना कभी। वैसे हमारी आवाज़ भी इसी स्टूडियो में गूंजती रहेगी और मेरे इस प्यारे से दोस्त माइक के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। हम मौका ही नहीं देंगे आपको कि आप हमें भूल सकें। इतनी श्योरिटी तो हम खुद से भी ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और हमारे जितने भी आरजेज हैं ना, बिल्कुल आपको भूलने नहीं देंगे अपनी आवाज़ें। श्रोताओ, हम बात कर रहे थे, किस पर बात कर रहे थे याद कीजिए आप भी थोड़ा सा जी। हम बात कर रहे थे www पर। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर। अब ये www वो कुश्ती वाला नहीं है भाई, ये है वही जिससे कि हम सारा दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। सच कहूँ तो आज के दौर में रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथी सबसे बड़ी ज़रूरत है हाई स्पीड इंटरनेट और बैटरी फुल। क्यों, सही कहा है ना मैंने। वैसे टिम बर्नली साहब ने भी जब वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था तो सोचा होगा कि दुनिया ज्ञान बांटेगी। उन्हें क्या पता था कि यहाँ लोग रील्स पर गुलाबी शराबा और मोए मोए करेंगे। और आजकल का सच भी यही है भाई दोस्तों, कि दिल टूटे तो बंदा संभल जाता है, पर अगर इंटरनेट का कनेक्शन टूट जाए तो सांसें अटक जाती हैं। पहले के ज़माने में लोग सुबह उठ करके बड़ों के पांव छूते थे। आज सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले www की दुनिया यानी सोशल मीडिया पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। भाई सबसे पहले तो मोबाइल ढूंढते हैं कि कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात को सोते वक्त हम उसी के ऊपर चढ़ के सो गए और वो उसका कहीं स्क्रीन क्रैक हो गया या उसे कुछ हो गया या हम देखते देखते ही सो गए हैं कुछ और मोबाइल जो है वो हमारा उसकी बैटरी जो है वो बिल्कुल ही ड्रेन आउट हो चुकी है। यही होता है ना, फटाफट ऐसे उठते हैं, ढूंढते हैं अपना चश्मा और ना अपने जो हम कहते हैं सुबह उठ करके प्रभु को याद किया करो, अपने हाथों को देखा करो, कुछ जो भी आप कहते हैं मंत्र जपते हैं वो किया करो। हम तो भाई यही सब करते हैं। हाँ श्रोता, हम कॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं 7018117091 पर। मैं तो ये बोलना ही भूल गई आज आपको। तो आज बहुत सारे विषय हैं हमने लिए हुए, किसी भी पर भी बात कर सकते हैं आज। अभी बताती हूँ आपको, विश्व लंग कैंसर डे भी है भाई। क्या बोला मैंने, हाँ विश्व लंग कैंसर डे मतलब वर्ल्ड लंग कैंसर डे, साथ में विश्व स्तनपान सप्ताह भी शुरू हो गया है आज ही से, 1 से लेकर 7 अगस्त तक ये चलने वाला है। और वर्ल्ड स्काउट स्कार्फ डे भी आज ही है।

दोस्तों, अब मैं भी थोड़ी सी शेरो शायरी कर लूँ। कभी खत कभी पैगाम, कभी कबूतरों का पहरा था, वो दौर भी क्या दौर था जब सब्र बहुत गहरा था। मगर आज WWW के इस दौर में सब कुछ बदल गया है जनाब। अब तो दिल का हाल भी स्टेटस पर लग जाता है और बिना कहे ही सारा ज़माना जान जाता है।

दोस्तों, जहां हम इंटरनेट की बातें आज कर रहे हैं, वहीं आज एक ऐसा दिन भी है जो सीधे हमारी सेहत और हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। आज है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। और आज की कड़वी सच्चाई ये है कि ये बीमारी सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों या सिगरेट पीने वालों तक सीमित नहीं रही। आजकल के खराब प्रदूषण, हवा में तैरते बारीक कण और पैसिव स्मोकिंग की वजह से हमारे देश के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सेहत को हल्के में ना लें।

श्रोताओं, आशा रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर होप नहीं होगी, हम आशा ही छोड़ देंगे, तो फिर हम जी नहीं पाएंगे। तो डॉक्टर कहते हैं आजकल जो युवा कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाते, उन्हें भी फेफड़ों की दिक्कत हो रही है। इसकी वजह है गाड़ियों का धुआं, हवा का प्रदूषण और हमारे आसपास होने वाली पैसिव स्मोकिंग। इसलिए जब भी प्रदूषण हो, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी को लगातार खांसी रहती है जो ठीक नहीं हो रही है, या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसे नॉर्मल एलर्जी समझ कर मत छोड़िए। समय पर डॉक्टर की सलाह लेना बड़ा ही समझदारी का काम है।

और अब आपको लिए चलें एक और दिवस की ओर। आज है वर्ल्ड स्काउट स्कार्फ डे। और इसका सीधा सा संबंध अनुशासन, टीम वर्क, कैंपिंग और समाज सेवा से होता है।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप जानने वाले हैं स्काउट्स के बारे में। जब हम स्कूल में थे ना, याद है वो दिन स्कूल के, जब बहुत से बच्चे स्काउट्स एंड गाइड्स की वो शानदार यूनिफॉर्म पहनते थे और गले में वो स्कार्फ बांधते थे। भाई वो स्कार्फ सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि इस बात का वादा था कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए हम तैयार रहेंगे। और कुछ लोग, कुछ बच्चे जो अभी भी स्काउट एंड गाइड में हैं, वो सोचेंगे भाई ये था करके क्यों बोल रहे हैं हम। मैं उनको संबोधित कर रही हूँ फिलहाल जो आपके माता पिता हैं या वो लोग जिन्होंने जब आपके समय में, मतलब अपने समय में आपका वाला ये काम वो कर रहे थे। तो चलिए फिर स्कूल के उन दिनों की यादों और एडवेंचर के नाम करते हैं अब अगली बातें, अगला सेशन। ये कहानी है साल 1907 की। आज ही के दिन यानी 1 अगस्त को दुनिया का सबसे पहला स्काउट कैंप शुरू हुआ था। कैंप इंग्लैंड के ब्राउनसी आइलैंड पर लगा था और जिसे स्काउटिंग के जनक बैडन पावेल ने आयोजित किया था। क्या आप जानते हैं कि स्काउट का जो स्कार्फ है वो सिर्फ यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। एमरजेंसी में इसे त्रिकोणीय स्कार्फ का इस्तेमाल यानी पट्टी बांधने के लिए यानी बैंडेज के रूप में भी किया जा सकता है। हाथ को सहारा देने, स्लिंग करने या धूल से बचने के लिए मास्क की तरह भी किया जा सकता है, यानी कि स्टाइल भी और सेफ्टी भी।

अब अगर स्कार्फ अकेला हो तब तो हम बात करें, लेकिन आपको पता है ना उसमें एक वोगल भी तो होता था, अभी भी होता है, और उस वोगल के बिना स्कार्फ, स्काउट की जो यूनिफॉर्म का जो स्कार्फ है वो अधूरा माना जाता है। और पहले होता था एक छोटा सा छल्ला, उसको कहते थे वोगल, जो पूरे स्कार्फ को उसकी जगह पर संभाल कर रखता था। स्कूल के दिनों में अगर वो वोगल कहीं गुम हो जाता था ना, तो भाई हमारी सांसें अटक जाती थी, क्योंकि वो आसानी से दोबारा मिलता ही नहीं था, छोटा सा होता है और उसके बिना स्कार्फ गले में टिकता ही नहीं। पीटी टीचर की डांट अलग से पड़ती थी,

जब शुरुआत हुई थी ना स्काउटिंग की, तो बच्चे स्कार्फ को बांधने के लिए कपड़े में गांठ लगाते थे जो अक्सर ढीली हो जाती थी। तब स्काउटिंग के जनक बेडन बावल ने चमड़े की एक रस्सी को बुन करके वो छल्ला बनाया जिसे कि हम आज वोगल कहते हैं। और स्काउट्स को सिखाया जाता है कि अपना वोगल खुद तैयार करें, चाहे वो चमड़े से हो, लकड़ी से हो या रस्सी से हो। यानी वो छोटा सा छल्ला सिर्फ स्कार्फ संभालने की चीज़ नहीं, बल्कि एक स्काउट की क्रिएटिविटी और आत्मनिर्भरता का मेडल।

बताओ आज ना, गीतों के बीच में मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। इन गीतों का जो भी मतलब आप निकालना चाहें वो आप खुद से निकालिए। और फेसबुक पेज से हम काफ़ी पहले लाइव हो चुके थे, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप हमें 7018110091 पर हमसे बात कर सकते हैं या वहाँ पर मैसेज छोड़ सकते हैं कि कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है।

जी हाँ, ऐसा हो तो फिर कैसा होगा भाई। आप भी सोचते होंगे कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। रतनदीप फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना। बहुत प्यारा सा गीत, जब भी इसे सुनती हूँ ना तो मैं पता नहीं कहाँ खो जाती हूँ। और श्रोताओं, एक बात आपसे कहना भूल गए हैं हम, जिसकी वजह से

0: और इतने सालों में आपका क्या योगदान रहा है रेडियो गुंजन के प्रति, वो आप सोचिएगा। बहुत सारे लोग तो हैं जो हमें मैसेज करते हैं और अपनी बात रखते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, लोग सुनते बहुत हैं, ये हमें पता है। ये आपका योगदान है और बहुत अच्छा योगदान है। ये बातें हम तक पहुंचती हैं, लेकिन पहुंचती हैं कहीं और से, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। आप डायरेक्ट नहीं पहुंचाते हैं ना। बहुत ही कम लोग हैं जो डायरेक्ट रेडियो गुंजन धर्मशाला से जुड़े हैं। अब तो हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ कर दी हैं। देखिए, लाइव प्रोग्राम भी हमारे शुरू हो गए हैं, आप बात कर सकते हैं, रख सकते हैं अपनी बात। और रेडियो गुंजन को आपसे सिर्फ इतना सा ही चाहिए कि आप हमारे कार्यक्रमों को ध्यान से सुनें और उस पर प्रतिक्रिया भी दिया करें। ताकि आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है असहयोग आंदोलन की, और आपको पता है कि देश के 14वें पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा वीएन शर्मा ने श्रीलंका में शांति सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, वो अब फानी दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं। मेजर के तौर पर उन्होंने 1965 के युद्ध में लाहौर सेक्टर से लड़ाई लड़ी थी। शुक्रवार को वीएन शर्मा ने दिल्ली में 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ के भाई वीएन शर्मा कांगड़ा जिला के पालमपुर तहसील के गांव डाड़ के रहने वाले थे। जनरल विश्वनाथ शर्मा का जन्म 1930 में हुआ। उन्हें वर्ष 1950 में भारतीय सेना की 16वीं लाइट कैवलरी में कमीशन मिला था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो रहें या ना रहें, लेकिन उनका नाम ऐसे ही दुनिया में अमर रहे। वो स्वतंत्र भारत के बाद कमीशन प्राप्त करने वाले पहले अधिकारी थे जिन्होंने आगे चल करके भारतीय सेना के सर्वोच्च पद थल सेनाध्यक्ष तक का सफर तय किया। एक गौरवशाली सैन्य परिवार से संबंध रखने वाले जनरल विश्वनाथ शर्मा परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। संपूर्ण सैन्य जीवन को राष्ट्र की सुरक्षा, सैनिकों के कल्याण, सैन्य मूल्यों की रक्षा तथा भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया। उनके निधन पर रक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रेडियो गुंजन धर्मशाला परिवार की ओर से भी उन्हें शत शत नमन।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।

जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हम अपनी आज़ादी को बिल्कुल भी किसी के हवाले ऐसे ही नहीं कर देंगे। क्या कहना है श्रोताओं आपका? इसीलिए तो ऐसे जो वीर हैं हमारे देश में पैदा होते हैं और देश के नाम अपनी पूरी जवानी अपना पूरा जीवन कर जाते हैं। तो मैंने भी एक अपनी बेटी दे दी है देश के लिए, अभी तो ट्रेनिंग में है। आगे चल करके क्या करती है देखने वाली बात होगी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो 1 अगस्त सिर्फ आज नया महीना शुरू नहीं हो रहा, बल्कि आज से दुनिया के सबसे ज़रूरी और संवेदनशील अभियानों में से एक की शुरुआत भी हो रही है भारत में। जी हाँ, आज से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह। और हमारे समाज में आज भी इस पर खुल करके बात नहीं की जाती, लेकिन सच तो ये है कि माँ का दूध नवजात बच्चे के लिए पहला प्राकृतिक टीका और अमृत के समान होता है। और ये बच्चे की जिंदगी भर के लिए बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो स्तनपान करवाना सिर्फ एक माँ की जिम्मेवारी नहीं होती है, एक कामकाजी माँ के लिए ये सफर तब आसान हो जाता है जब उसका परिवार, उसके ऑफिस के लोग और हमारा समाज उसे एक सुरक्षित और सहज माहौल दें। यानी कि जब हम बस में भी ट्रैवल करते हैं, उस वक्त भी अगर बच्चे को भूख लग जाए तो लोग किस तरह से उस लेडी को देखते हैं। वैसे तो हमें भी सोच समझ करके चलना चाहिए, एक दुपट्टा या कोई ऐसी चीज़ अपने साथ रख लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों की नज़रें कहाँ होती हैं। हमें पब्लिक प्लेसेस और वर्क प्लेसेस पर ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होंगी जिससे नई माताओं को कोई असुविधा ना हो। और डॉक्टर्स कहते हैं कि जन्म से पहले के 6 महीनों तक, मतलब जन्म से के बाद पहले के 6 महीनों तक बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। ये न सिर्फ बच्चे को निमोनिया और कई गंभीर बीमारियों से बचाता है, बल्कि खुद माँ को भी ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के खतरे से दूर रखता है।

0: जी श्रोताओं, सहयोग आंदोलन और तिलक स्वराज फंड के बारे में आज हमने बात की। देशभक्ति, एकता और इतिहास के बारे में जाना। आज हमने बात की है वर्ल्ड वाइड वेब डे के बारे में, डिजिटल इंडिया रील्स और आज के युवाओं का मजेदार लाइफस्टाइल जो रहता है, और लंग कैंसर डे, युवाओं में हेल्थ अवेयरनेस और प्रदूषण से बचाव वो कैसे कर सकते हैं, वर्ल्ड स्काउट स्काफ डे, और बोगल की बातें हुई, बचपन की यादें, स्कूल का नॉस्टैल्जिया और अनुशासन कैसा रहता था, और बात हुई है विश्व स्तनपान सप्ताह की। ये बेहद जिम्मेदार और जरूरी सामाजिक संदेश हमने यहाँ से दिया और आपको बता दिया है कि रेडियो गुंजन धर्मशाला का बर्थडे भी है आज।
1: पहले जमाने को वो अपने को
0: 9 साल हो गए हैं आपकी सर्विस में, अभी और भी बहुत साल बिताएंगे हम। यूं ही सुनते रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला, और ज्योति पठानिया को अब दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जल्द मिलूंगी आपसे किसी और दिन इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: क्यों क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
3: टेस्ट
4: टेस्ट
3: टेस्ट
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
8: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
9: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
10: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
11: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

जी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तू अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: के हो गए।
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट
2: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
3: टेस्ट
4: टेस्टिंग
5: टेस्ट
3: टेस्ट
6: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
12: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
13: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज,

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ हर हफ्ते आप सभी के लिए लेकर आते हैं खास जानकारियां खास कार्यक्रम के साथ। जी दोस्तों, तो आप सभी सुनते हैं कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो इस कार्यक्रम की एक और कड़ी, एक और जानकारी को लेकर आप सभी के साथ जो है वो हम जुड़ने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं रुचिका के साथ, और साथ ही हमारे खास जो मेहमान जुड़ते हैं
1: प्रियाशी
0: जी। तो स्वागत है मैम आपका इस बहुत ही खास बातचीत में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका।
0: तो कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: और उम्मीद करते कि हमारे दोस्त भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ।
1: बिल्कुल
0: जी। तो मैम, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, जैसे सीजनली अगर हम सब्जियों की बात करें तो वो भी सीजनली होती हैं। बात करें थोड़ा सा हम खाने की, मेरा खाना किसको पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है। सभी खाने के जो है मज़े लेते हैं और अलग अलग शॉप्स को ट्राई करते हैं, रेस्टोरेंट्स को ट्राई करते हैं कि कहाँ बेहतर खाना मिल जाएगा।
1: देखिए, हमें लगता है बदलते मौसम के साथ जो सब्जियों में, जो सीजनल वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में बदलाव आता है, उसका एक तरफ एक प्रकार से मानसिक स्तर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम लोग सीजनल वेजिटेबल्स की जगह ऐसी वेजिटेबल्स या ऐसा खान पान लेने लगे, ऐसी चीज़ें ग्रहण करने लगे जो हमारे सेहत के लिए अच्छी ना हो, तो उससे हमारे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ता है। क्योंकि हमारा जो फिजिकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है, वो सारे हमारे जो अंदर के गट बैक्टीरियाज हो गए, या फिर हमारे जो अंदर हार्मोन्स हो गए, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, उन सब से आपस में कनेक्टेड होता है। उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि एक व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहती है। इसीलिए डाइट बिकम समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ।
0: जी, तो अभी दोस्तों हमने खाने की बात की है कि किस तरह से जो है खाना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जैसे कि मैम ने अभी बताया। तो मैम, अक्सर हम सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ें हम देखते नहीं हैं कि ये हमारे चाहे मानसिक हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। कई बार क्या होता है कि पेट भर जाता है लेकिन आंखें नहीं भरती हैं। तो एक कहते हैं ना कि ओवर ईटिंग, तो बिल्कुल दोस्तों ओवर ईटिंग की हम बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब कि हम तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट खाना देखते हैं तो मन करता है कि सारा ही खाना हम खा लें, लेकिन पेट में उतनी जगह नहीं होती। लेकिन तो अक्सर हम यही सुनते हैं, ज्यादातर अगर हम खाने की बात करें तो ओवर ईटिंग का ही हमारी जुबान पे जो है नाम आता है। लेकिन एक जो हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर की, तो ये हम किस तरह से समझ सकते हैं, असल में ये ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, इसे हम कैसे, अगर हम साधारण से शब्दों में अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें तो हम कैसे इसे समझ सकते हैं?
1: देखिए, खाना तो सबको ही बहुत पसंद होता है
0: जी,
1: लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में खाने से संबंधित स्ट्रेस डेवलप होने लग जाए, बी एट कि वो खाना ज़्यादा खाना चाहे वो एक प्रॉब्लम बन जाए, या फिर वो खाना कम खाना चाहे वो एक प्रॉब्लम बन जाए, या फिर बोलिए कि हम खाना खा भी रहे हैं और हमें फिर दिक्कत भी हो रही है, तो मतलब खाना खाना तो चाहते हैं, उसकी अर्ज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम वो खाकर खुश नहीं हो रहे हैं, हम उसे खाकर और दुखी हो जा रहे हैं। तो बेसिकली जब खाना और स्ट्रेस साथ में एक्यूमुलेट हो जाए, साथ में एसोसिएट हो जाए, तब हम उसको सोच समझ पाते हैं कि अच्छा, ये एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है। इसमें अगेन कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि खाने की मात्रा या जो स्ट्रेस है या उनका जो इम्पैक्ट है, चाहे वो खाना खाना हो ना खाना हो, या फिर जो स्ट्रेस आ रहा है उसके साथ, उनका जो इम्पैक्ट है वो एक पर्सन के सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट करने लग जाए। उसके साथ साथ अगर उनको उस चीज़ से जो स्ट्रेस है वो लगातार बना हुआ है, खाने की मात्रा जो है या खाना की जो फ्रिक्वेंसी है या ड्यूरेशन है या जो उसकी इंटेंसिटी है, वो आम लेवल से कम या आम लेवल से ज़्यादा हो जाए, और ये चीज़ रिकरेंटली प्रेजेंट रहे। जैसे होता है कि कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग को बहुत इच्छा होती है खाना खाने की, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा
0: जी।
1: वंस इन अ वाइल वो चीज़ करी गई है, इट्स टोटली ओके, सम अंडरस्टैंडेबल है, बट अगर वही चीज़ बार बार होने लगे, डेली लेवल पर होने लगे, तब वो चीज़ कंसिडर करी जाएगी या समथिंग प्रॉब्लमेटिक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कुछ रुचिका, जिनसे हम समझ सकते हैं अच्छा कि एक व्यक्ति की जो ईटिंग हैबिट है अब वो ईटिंग डिसऑर्डर में तब्दील हो रही है।
0: तो मतलब कि जैसे बीमारियों की ही बात करें, रिलेट कर सकते हैं एक तरह से हम, कि जब एक आधी बार अगर हम उसे फेस करें तो नॉर्मल है, लेकिन जब बार बार वो हमें चीज़ परेशान करना शुरू कर दे एक तरह से, या तो जैसे हम खाने की बात करें तो कई बार ऐसा होता है जब बच्चों की बात करें खास करके, तो जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बाहर अपनी स्टडी पूरी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मन डेली ही जब एक बार बाहर का खाना खा लिया तो फिर डेली मन ना करे बनाने का, तो वो बाहर का खाना जो है एक तरह से वो डिपेंडेंसी जो हो जाती है उसको हम उसमें कंसीडर कर सकते हैं, या वो अलग वे में है।
1: वो अलग है, उसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ईटिंग हैबिट इज नॉट गुड, ईटिंग की हैबिट्स भी होती हैं। पर जब हम लोग डिसऑर्डर की बात करते हैं ना रुचिका, तो वो बहुत एक्सट्रीमिटी के बारे में बात करी जा रही होती है।
0: तो ये मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ मैम कि जब हम इसे डिसऑर्डर का नाम दे रहे हैं तो वो एक्सट्रीमिटी मतलब कि किस
1: क्या
0: तरह
1: है?
0: से हम इसे
1: देखिए,
0: डिफ्रेंशिएट
1: स्ट्रेस इज अ
0: करेंगे।
1: वेरी बिग फैक्टर हियर। व्हेन समबडी हु गोज आउट डेली एंड हैव फूड दैट विल गिव देम जॉय, वो उन्हें खुशी देगा,
0: जी
1: वो उन्हें स्ट्रेस नहीं देगा। तो क्योंकि स्ट्रेस प्रेजेंट ही नहीं है तो वो डिसऑर्डर में माना ही नहीं जाएगा।
0: ओके, मतलब कि जो हमें एक तरह से टेंशंस में लेके जाए, सोचने
1: सोचने भी मजबूर कर दे, हमारे दिमाग में रिकरेंटली ये थॉट आता रहे कि हमने ज्यादा खा लिया, हमने ज्यादा खा लिया, हमने ज्यादा खा लिया, हमने ज्यादा खा लिया, अब उसको कंपनसेट करने के लिए या उस गिल्ट से अपने आप को रिलीज करने के लिए, देन द पर्सन वुड अटेम्प्ट डिफरेंट थिंग्स, एक्सरसाइज करेगा, इतना दौड़ेगा, फिर वो अपने इनटेक्स को लेके बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जब तक आप, अब जैसे लोग जो जिम जाते हैं वो भी अपने इनटेक को लेके काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं,
0: जी
1: लोग एक एक ग्राम को कैलकुलेट कर करके खाते हैं, उसमें बुराई नहीं है, वो एक डिसिप्लिनरी ईटिंग है, वो उनकी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। बट अगर यही पार्ट उनको स्ट्रेस देने लग जाए, उनको उनकी नींद उड़ा दे, उन वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनका मन ही ना लगे, उसमें उनका ध्यान ही ना लगे, उनका अटेंशन इसी चीज़ के अराउंड ही घूम रहा है कि मैंने इतनी कैलोरीज खा ली है, तब वो चीज़ डिसऑर्डर का रूप ले रही है। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा डेली बाहर का खाना खा रहा है, वो तो उसको तो जॉय मिल रहा है
0: इंजॉय
1: उसमें,
0: मिल रहा है,
1: वो उसको
0: बिल्कुल
1: एंजॉय कर रहा है, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके ध्यान में भी नहीं है कि आज मैंने क्या क्या खा लिया, ये मुझे नुकसान भी दे सकता है ना।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसीलिए उसको हम लोग पुअर ईटिंग हैबिट्स बोलेंगे, उसे हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर का नाम नहीं दे सकते।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी भी इस बात को बहुत अच्छे से जो है रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि अक्सर हमारे मन में बातें एक तरह से आ ही जाती हैं कि कई बार होता है हम बच्चों की ही बात नहीं करें, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, जब हम बाहर एक बार खाने के लिए मन करता है तो फिर वो डेली भी कई बार रूटीन बन जाती है। तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि जो खाना हमें एक तरह से स्ट्रेस ना दे, कोई टेंशन ना दे, कोई परेशानी ना दे, तो उसे हम डिसऑर्डर का नाम नहीं देंगे। जो खुशी दे वो हमारे लिए एक तरह से बैड हैबिट, या एक बोल सकते हैं कि लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं बिगड़ बिगड़ सकता है उससे, अनहेल्दी फूड जो है वो हमारे अंदर जा सकता है। लेकिन हाँ, डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो डिसऑर्डर वहां पे हम काउंट करेंगे जहां की जो खाना हमें एक तरह से बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन्स में लेके चला जाए, गिल्ट में लेकर चला जाए, और हम बस पूरा टाइम उसी के बारे में सोचते रहें। तो ये चीजें प्रेफर करती हैं डिसऑर्डर को खास करके। हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों इसके बारे में कि क्या क्या इसके लक्षण रहते हैं, या किस कितने प्रकार के ये रहता है, तो उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों इस प्यारे से गीत के ब्रेक के बाद आइए फिर से अपनी बातचीत की ओर आप सभी को लेकर चलते हैं। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो बहुत ही खास बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि खाने की डिशेस जो होती हैं बहुत प्यारी प्यारी सी होती हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी सी होती हैं, और जब भी खाने की बात चलती है तो मुंह में पानी आ ही जाता है, और जब डिशेस का नाम आ जाए तब तो मन करता है कि हाथों में ही आ जाए, तो क्या बात है। तो बहुत इस खास बातचीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो मैम, जैसे कि हमने बात की कि ईटिंग डिसऑर्डर जो है हम किस तरह से मानते हैं या समझ सकते हैं इस चीज को, अब हम बात करें क्या ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है ये सिर्फ हमारे खान पान या वजन से जुड़ी एक समस्या है, या फिर इसके पीछे एक गहरा मानसिक प्रभाव जो है वो हमारी हेल्थ से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा है?
1: डेफिनेटली इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉज है। देखिए, खाना हमारे कल्चर में बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, सिर्फ सर्वाइवल के एस्पेक्ट से ही नहीं लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी। फूड हैज़ ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद लव ऑफ अ मदर। हम जब कभी किसी के यहाँ एज गेस्ट भी जाते हैं तो भी वो बोलते हैं नहीं नहीं आप एक रोटी और खा लीजिए, एक और ले लीजिए, तो उनसे उनका प्यार झलकता है। ऐसे ही बचपन से ही जब एक बच्चा पैदा होता है तब से वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है फॉर देयर सर्वाइवल, एंड फूड या बेसिकली जो ब्रेस्ट मिल्क है दैट इज समथिंग विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड फ्रॉम द मदर। मदर बिकम्स अ सिंबोलिज्म ऑफ फूड, समवन हु इज गोइंग टू प्रोवाइड मी फूड, एंड फूड इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल। तो जहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे को कम प्यार मिल रहा है या ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सो ओवर पैम्परिंग हो गई या फिर बहुत कम प्यार मिल रहा है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी, अब हर बच्चे में तो इस प्रकार की चीज़ नहीं टेक प्लेस करेगी, बट इन सर्टेन केसेस व्हाट हैपेंस इज कि उनके अंदर ईटिंग को लेकर पुअर हैबिट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आती है या किसी प्रकार की एंजाइटी डेवलप होती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड अलग अलग प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ करता है, जो व्यक्ति के बिहेवियर से या उसकी सोच समझ से उसको उस पर्टिकुलर चैलेंज को फेस करने में उसकी मदद कराता है। नाउ इमेजिन कि अगर एक बच्चा है, एक व्यक्ति है जिसको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, सो देर इज़ दिस बिलीफ इन देम कि आई एम नॉट गुड इनफ, और माइंड क्या करता है ना, माइंड किसी भी नेचर से या प्रकृति से भिन्न नहीं है, ये भी प्रकृति ही है। आप देखेंगे रुचिका तो आप समझेंगे कि प्रकृति में हर चीज़ जो है वो एक बैलेंस की फॉर्म में चलती है
0: जी,
1: राइट? अब अगर व्यक्ति का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट आई एम नॉट गुड इनफ, मैं काफ़ी नहीं हूँ, तो उसका एक्सटर्नल बिहेवियर होगा कि मैं काफ़ी हूँ,
0: बिल्कुल,
1: वो उसे कंपनसेट करने का प्रयास करेगा। और मैं काफ़ी कैसे होऊंगा जब मुझे हर वो चीज़ मिलेगी जो मैं चाहूँगा? मुझे क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए जो मेरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कंपनसेट कर सके। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैं इनफ नहीं हूँ आएगा कि मुझे प्यार कम मिला है या मुझे उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, या कोई मुझे प्यार नहीं करता बिकॉज मैं इनफ नहीं हूँ इसलिए लोग मुझे प्यार नहीं करते। हैंस उसका एक्सटर्नल बिहेवियर रहेगा कि मुझे प्यार मिले। वो प्यार को कहाँ से लेने का प्रयास करेगा? फूड से, बिकॉज पीपल कैन नॉट कंट्रोल और चेंज द ह्यूमंस अराउंड देम, बट दे कैन कंट्रोल और टेक चार्ज ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स।
0: बिल्कुल, तो ईटिंग हैबिट्स को हम कंट्रोल
1: करने का प्रयास करेंगे, वहाँ से हम इंसान जो है उसको कंपनसेट करने का प्रयास करता है
0: जी। और ये एक तरह से कंपनसेशन की हम बात करें तो लाइफ में हर कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये बातें एक तरह से हमारी डेली रूटीन से ही जुड़ी हैं, और अगर हम पूरी गहराई से देखने लगे, सुबह से लेकर शाम तक देखने लगे, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार हमारे मन में ये बातें हमें परेशान करती ही करती हैं। तो जैसे कि अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसके लक्षणों की हम बात करें, इसके सिम्टम्स की हम बात करें, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे में ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो परेशानी शुरू हो रही है, या हमें ये फेस, मतलब कि हमने शुरू कर दिया अपनी लाइफ में से फेस करना?
1: देखिए, देर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट एंजाइटी रिलेटेड टू फूड कि मैंने खाना या तो नहीं खाया है, या तो मुझे खाना और खाना है, या फिर देर इज अ गिल्ट अटैच टू इट कि मैंने इतना खाना क्यों खा लिया, और दैट देर इज कॉन्स्टेंट वरी अबाउट मैं इतना खाना खाऊंगा और इतना नहीं खाऊंगा. ये चीज़ सुबह से लेके रात तक रहेगी, कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी एक लंबे अरसे तक, मतलब हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता गुजर जाएगा, बट इंसान इसी चीज़ में अटक चुका
0: चलता
1: है.
0: रहे।
1: उनका जो सोच है, जो उनकी ओवर थिंकिंग है, वो इसके रिगार्डिंग ही चलती रहेगी. जब इस प्रकार की चीज़ें हों और इंसान के बिहेवियर में या उनके वेट में, बॉडी वेट में अचानक से कोई बॉडी, उनका जो वेट है वो बढ़ जाएगा या फिर वो उनका वेट घट जाएगा, जब इस प्रकार की चीज़ें होती तब समझ जाना चाहिए कि ये जो है ठीक नहीं जा रहा है, कुछ तो इशू है.
0: तो मैम, जैसे अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो क्या ये एज वाइज डिपेंड करता है या सभी को एक तरह से ये फेस होती हैं चीज़ें?
1: एज वाइज तो नहीं इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि इस एज में इस प्रकार का ही डिसऑर्डर रहेगा, नहीं. कि वो किस प्रकार से, किस रूप से वो चीज़, वो स्ट्रेस बाहर आएगा. देखिए, स्ट्रेस ऑलरेडी प्रेजेंट है जीवन में. अब वो स्ट्रेस जिससे एंजाइटी डेवलप हो रही है, उस एंजाइटी को कंपनसेट करने के लिए या उस पर काम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज होगा. वो डिफेंस मैकेनिज्म देन विल रिजल्ट इन टू डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर. तो स्ट्रेस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो ईटिंग डिसऑर्डर में भी अब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं. तो इसमें एज या फिर व्हाट फेज ऑफ लाइफ द पर्सन इज इन, इससे इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है.
0: जी बिल्कुल. तो दोस्तों, कई बार ऐसा हमें लगता है कि बीमारियां जो है, मतलब कि हमारी एक तरह से ये मानसिक सोच होती है कि बच्चों को ज्यादा हो सकती है या युवाओं को ज्यादा हो सकती है या बुजुर्गों को ज्यादा हो सकती है, तो हम ये कई बार जो है एज वाइज जो है इन्हें डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं. तो इसलिए ये सवाल जो था मेरा अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, ताकि हम हर चीज़ को जो है वो अच्छे से समझ सकें और जान सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है बिना जानकारी के हम जो चीज़ें करने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं होता, तो वो भी हमें प्रॉब्लम में लाकर खड़ा कर देते हैं. तो टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स का जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर रहता है, लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत.

0: दोस्तों, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं 91.2 ओमेगा हर्ट्ज पर। ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास बातचीत आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में आप सभी जान रहे हैं। तो मैम, जैसे कि अभी हमने बात की कि किस किस तरह से जो है ये हमें फेस करना पड़ता है, एज वाइज नहीं होता है और ये जो है एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य पे जो है प्रभावित करता है। अब हम बात कर रहे थे गीत से पहले कि ये कितने टाइप्स का रहता है, तो ईटिंग डिसऑर्डर को हम कितने टाइप्स में लेते हैं या कितने किस तरह से होते हैं?
1: ईटिंग डिसऑर्डर देखिए मेनली तीन टाइप्स के हैं। तो पहला जो आई थिंक जिसको सभी लोग जानते हैं उसे हम बोलते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर।
0: वो किस तरह से रहता है?
1: बिंज ईटिंग का मतलब है कि आप इकट्ठा एक बार में बहुत सारा खाना खा लेते हैं। इंसान को अंदर से ऐसे अर्जेस आती हैं कि मुझे खाना खाना है
0: जी।
1: बेसिकली पहले स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस एंजाइटी ट्रिगर होती है। एंजाइटी ट्रिगर होने पर वो अपनी एंजाइटी को शांत करने के लिए बहुत सारा खाना खाने की इच्छा उनके अंदर जागरूक होती है, फिर वो बहुत सारा खाना मंगाएंगे और वो बहुत सारा खाना खा लेंगे। ये जो इतना सारा खाना खाते हैं, ये चीज़ अगेन परसिस्टेंटली प्रेजेंट रहेगी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और तभी इस डिसऑर्डर को डिसऑर्डर का रूप दिया जाएगा। क्योंकि बिंज ईटिंग तो अक्सर आम आदमी भी कभी कभी कर लेता है, बट अगर कोई व्यक्ति बिंज ईटिंग को डेली लेवल पर कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है, या जैसे ही स्ट्रेस आ जाए तभी वो इतना सारा ओवरली, आप समझ रहे हैं, ओवरली ही खाना खा ले, जितना शायद पॉसिबल ही नहीं है एक आम व्यक्ति के खाने के लिए। जैसे आप आधा केक खा सकते होंगे बिंज, आप उसको बोलेंगे मैंने बिंज ईटिंग कर ली, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिंज ईटिंग कर सकते हैं वो पूरा का पूरा 2 केक 3 केक 4 केक खा जाएंगे। तो दैट इज़ द लेवल ऑफ डिफरेंस, जो स्केल की बात हो रही है ये उस लेवल का डिफरेंस है बेसिकली।
0: पर मैम, आपको क्या लगता है कि अगर हम इस डिसऑर्डर को देखें, बिंज ईटिंग को, तो क्या ये डेली में हमारी लाइफ में डेली रूटीन में आ सकता है? इज इट पॉसिबल?
1: बिल्कुल आ सकता है। डिपेंड करता है कि स्ट्रेस किस लेवल का प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को कंपनसेट या ओवरराइड करने का प्रयास करता है बाय ईटिंग अ लॉट, बाय स्टफिंग देमसेल्फ।
0: क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर नॉर्मल हम लाइफ की बात करें, हम मतलब कि अपने ही अपने साथ जुड़ी कुछ बातें, तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार मन करता है कि बहुत कुछ खा लें, जैसे आप कह रहे हो कि मन करता है कि सब कुछ ही खा लें हम, है ना, लेकिन एक दिन खा लिया जैसे, तो अगले दिन फिर नहीं यार, मतलब हमें वो एक सिग्नल मिल जाता है कि नहीं
1: हाँ, अब रुक जाना चाहिए, पेट बहुत भरा हुआ
0: है, तो फिर मुश्किलें हो
1: जाएगी, डाइजेशन ठीक नहीं है, राइट, दिस इज व्हाट इट इज फॉर अ ले पर्सन
0: जी।
1: लेकिन जब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, जिनको ये डिसऑर्डर होता है, तो ऐसे में व्यक्ति का बहुत ही क्लासिक बिहेवियर होता है, क्लासिकली अर्जेस उनकी प्रेजेंट होती है जैसे ही स्ट्रेस उनके लाइफ में आता है। तो स्ट्रेस आएगा एंड देन दे विल स्विच टू बिंज ईटिंग, फिर से स्ट्रेस हुआ, फिर से बिंज ईटिंग। और वही बात है कि सर्कमस्टेंशियली डिपेंड करता है कि उनके लाइफ में स्ट्रेस आ कब कब रहा है। अगर वो परसिस्टेंटली बना हुआ है तो उनका बिंज ईटिंग हैबिट जो है वो भी परसिस्टेंटली बना रहेगा। ये चीज़ इसमें व्यक्ति के अंदर कंट्रोल नहीं हो पाता, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता कि मुझे अब जो है रुक जाना चाहिए, वो स्टॉप नहीं लगा पाता, वो खाते ही रहते हैं। अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग साइकोलॉजिकली इज सबकॉन्शियस लेवल पर उनका वो जो इतना खाना खा रहे हैं दैट इज ऑफरिंग देम अ सेंस ऑफ कम्फर्ट, अ सेंस ऑफ प्लेजर एंड अ सेंस ऑफ लव एंड बीइंग केयर्ड।
0: जी बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा दोस्तों कि किस तरह से कई बार हमारे साथ तो ऐसा ही होता है कि एक दिन बहुत ज्यादा खा लिया, दूसरे दिन मतलब कि पता चल जाता है कि नहीं, अगर ज्यादा खा लिया तो मुश्किल हो जाएगी डाइजेशन में, फिर नींद भी नहीं आती, एक तरह से सो नहीं पाते।
1: रुचिका, इसमें आप ये भी देखेंगे कि आप जो बहुत ज्यादा खा लेंगे वो सर्कमस्टेंशियली होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन स्ट्रेस।
0: बिल्कुल,
1: है ना, और उसकी भी एक मात्रा होगी। आप स्ट्रेस में हैं अगर और आपने कुछ अच्छा खाना खा भी लिया, लेट्स से योर फेवरेट फूड या ऑल योर फेवरेट डिशेस यू हैव ईटन, उसका भी एक मात्रा होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक मात्रा तक ही हम खा पाते हैं, उसके बाद तो फिर ओवर ईटिंग हो जाता है। तो वो सेकंड टाइप की हम बात करें तो सेकंड टाइप किस तरह से रहेगा?
1: सेकंड टाइप जो है उसका नाम है बुलिमिया नर्वोसा।
0: बुलिमिया, इसमें भूल जाते हैं कि खाते खाते
1: नहीं, खाना खा लेने के बाद भूलने का प्रयास करते हैं कितना खाया है
0: मतलब भूलने से जुड़ा जरूर है।
1: सो बेसिकली बुलिमिया नर्वोसा में इंसान बिंज ईटिंग तो करता है
0: जी,
1: बट दैट कम्स अलोंग विद रिमोर्स, एज इन उनके अंदर एक गिल्ट आ जाता है खाना खाने के बाद ही कि मैंने इतना सारा खाना क्यों खा लिया, और उस गिल्ट को कम करने के लिए देन द पर्सन ट्राइज टू वॉमिट। पहले पर्सन बहुत सारा खाना खाएंगे और फिर उसके खाना खाने के बाद ही उनको जो गिल्ट ट्रिगर होगा उससे दे विल ट्राई टू वॉमिट इट आउट कि उतनी सारी कैलोरीज

0: उनकी बॉडी में ना जाए। तो ये पहले जो बिंज ईटिंग बताया, बिंज ईटिंग इसका भी पार्ट है, बस ये है कि इसमें बिंज ईटिंग के साथ साथ गिल्ट एंड
1: वॉमिटिंग
0: वॉमिटिंग इंक्लूड रहता है। तो मैम ये जो मतलब कि एक तरह से गिल्ट वाली बात है, तो ये किसी रीजंस की वजह से या सिर्फ स्ट्रेस का ही लिंक है इस पूरी इसमें अगर हम बात करें?
1: देखिए, स्ट्रेस का तो लिंक है ही, है ना। इट्स अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज अकरिंग। सबके डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग है। अब एक प्रकार से देखिए तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। हमें प्यार कहीं और से चाहिए, बट हम उसको कंपनसेट कहीं और से
0: कहीं
1: कर
0: और
1: रहे
0: से कर
1: हैं।
0: रहे हैं।
1: उसके बाद हमें ये भी पता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर माई बॉडी, तो वो एक गिल्ट भी क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर अनडूइंग का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपने करे हुए एक्शंस को अनडू करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर अनडूइंग का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है।
0: बट ये मतलब कि उन लोगों के साथ में भी ज्यादा रहती होंगी सिचुएशंस जो अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा मतलब सोचते हैं।
1: बिल्कुल। पीपल हु आर मोर कॉन्शियस अबाउट हाउ दे अपियर, पीपल हु आर इन टू मॉडलिंग बिजनेस, या फिर जो हमारे एक्टर्स हो गए,
0: जी
1: उनके साथ ये चीज़ होना ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखती है, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्स्टेंट वरी रहती है इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी कैलोरीज आई हैव टेकन इट, जो पीपल हु आर इन फिटनेस फील्ड है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह के लोगों को ये इस प्रकार के परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है।
0: और स्ट्रेस का भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ऐसे ही फील्ड में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। नॉर्मल लाइफ की हम बात करें तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी चीजें जो है उन्हें फेस करनी पड़ती होंगी।
1: किस तरह का स्ट्रेस?
0: जैसे अगर मतलब खाने से रिलेटेड ही अगर हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने खा लिया तो बहुत ज्यादा खा लिया, तो फिर वो सोच विचार, क्योंकि हमें तभी ऐसा फील होता है जब हमें एक तरह से एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है या सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आती
1: हाँ,
0: है।
1: वो तो देखिए पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से
0: हाँ
1: हो रहा है।
0: वही।
1: लेकिन जहां तक बात करी जा रही है ईटिंग डिसऑर्डर की, तो ऐसा मानिए कि इंडियन कल्चर में हमारा जो नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, तो 2 to 3% ऑफ पीपल दे गो थ्रू ईटिंग
0: जी
1: डिसऑर्डर्स,
0: बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे लोगों को मैक्सिमम इतनी चीजें ये
1: जबकि
0: है ना
1: यूएसए में ये चीज़ नाइन
0: ज्यादा है।
1: परसेंट तक प्रोमिनेंट है। तो दैट इज़ अराउंड 28 बिलियन पीपल। तो इट्स वो वेरी करता है, वो स्केल पर वेरी करता है, वो जो एक कल्चरल बैकग्राउंड है, कल्चरल नॉर्म्स हैं उन पर वेरी करता है। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी की सोच कैसी है, बिकॉज यू सी देर आर सर्टेन फैमिलीज जहाँ पर आपके अपियरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यू विल फाइंड पीपल लाइक यू विल फाइंड पेरेंट्स हु आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर ओन यू नो डॉटर्स एंड चिल्ड्रन की, अरे तुम तो इतनी मोटी लग रही हो स्ट्रेस में, तुम ऐसे मत पहनो।
0: बिल्कुल
1: तो उनको निग्लेक्ट तो मिल ही रहा है, उनको अनलव्ड और अनसीन भी फील हो रहा है, अनएक्सेप्टेड भी फील हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति का दिमाग, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म, वो इस प्रकार से काम कर सकता है कि दे मे एंड अप हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर्स।
0: बिल्कुल। तो ये अगर ऐसी सिचुएशंस को हम देखें तो वो तो हमें यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी। अगर अब की बात करें, आज के समय की हम बात करें, पहले
1: बिल्कुल
0: खैर
1: बिल्कुल।
0: इतना
1: देखिए
0: ध्यान नहीं
1: ईटिंग डिसऑर्डर
0: देते
1: के ऊपर क्या है ना कि लोगों को अवेयरनेस ही बहुत कम है।
0: थे। जी
1: तो पुअर ईटिंग हैबिट या फिर रो दिए स्ट्रेस हो गया, लोग इसको इस तरीके से करके ना टाल देते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो सामने आ पाते हैं। हमारी फील्ड में ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आज तक नहीं आए हैं लोग, आते हैं लोग, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ पीपल जो अप्रोच करते हैं वो काफ़ी कम होते हैं।
0: बिल्कुल। तो ये दोस्तों ज्यादातर केसेस यही हो सकते हैं, खास करके युवाओं में लड़कियों की बात करें हम, उनके साथ ये सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि अगर उन्हें लगे कि नहीं हम थोड़ा सा भी मोटापा जो है हम गेन कर रहे हैं,
1: देन
0: तो
1: वी
0: अगर
1: विल एंड
0: थोड़ा
1: अप
0: सा
1: लूजिंग
0: खा
1: समथिंग एल्स। सी,
0: लिया
1: ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है कि हमारी बॉडी अपियरेंस अगर ऐसी से ऐसी हो जाएगी, देन वॉट आर द थिंग्स दैट वी मे एंड अप लूजिंग,
0: जी
1: यू नो।
0: बिल्कुल।
1: तो उसका डर, उसका उस चीज़ को खोने का डर ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दैट इट अल्टीमेटली एंड्स अप क्रिएटिंग इवन मोर स्ट्रेस फॉर द पर्सन। तो ऐसे में तो बहुत ही आम है कि पीपल विल रिमेन कंसर्न अबाउट देयर अपियरेंसेस.

0: तो सो इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो बहुत ही खास जानकारी मैम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर की, जो कि आज तक आप सभी ने शायद ही सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अगर हम सुनने की बात करें भी बहुत कम लोग जानते होंगे जो मेडिकल फील्ड से होंगे या फिर जो थोड़ा सा जानने की इच्छा रखते होंगे। अदरवाइज तो हमें यही होता है, बस खाना खाओ, सो जाओ, कमाओ, बस यही करते रहो। तो आज ये बहुत ही खास जानकारी जो है वो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर एक पहलू को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम जानेंगे तभी तो हम उस पर काम कर सकेंगे, नहीं तो आज के समय में आप सभी देख रहे हैं कि जिंदगी किसी की भी, किसी भी इंसान के लिए एक मजाक से बनकर रह गई है। तो खुद का मजाक ना बनने दें और ना ही किसी का बनाए, बल्कि ये बहुत ही अनमोल सा समय है, बहुत अनमोल जिंदगी है, तो इसे खुलकर इंजॉय करें पूरे नॉलेज के साथ, पूरी जानकारियों के साथ। तो मैम जैसे कि हम टाइप्स की बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर की, तो

0: दो टाइप्स हमने डिस्कस किए, अब आते हैं थर्ड टाइप पे। तो उसमें याद रखने की बात है या फिर मिक्सअप है सारा?
1: देखिए, स्टार्टिंग के जो दो हमने आपको बताए
0: जी,
1: बिंज ईटिंग एंड बुलिमिया
0: जी,
1: दोनों ही ऐसे डिसऑर्डर्स हैं विच अल्टीमेटली विच माइट टेक द पर्सन टूवर्ड्स ओबेसिटी। बिंज ईटिंग विल टेक द पर्सन टूवर्ड्स ओबेसिटी, बुलिमिया नर्वोसा मे ट्राई टू प्रिवेंट टू टेक द पर्सन टूवर्ड्स ओबेसिटी। उसके अलावा देर इज वन सिंड्रोम, नाइट ईटिंग सिंड्रोम।
0: बिल्कुल,
1: द नाइट ईटिंग सिंड्रोम अगेन मे टेक द पर्सन टूवर्ड्स ओबेसिटी। तो दिस द थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस ईटिंग डिसऑर्डर इज बेसिकली कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ इट। जैसे हमने बताया, इन टू एक्सट्रीमिटीज, टू पोलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट?
0: जी,
1: ज्यादा खाना भी खराब है और
0: कम खाना भी खराब है।
1: सो थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा दो शब्द है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंसान खाना बहुत कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि उनकी बॉडी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, इतना कि उनकी जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है, उनका जो कॉग्निशन है, जो उनका एक एनर्जी लेवल है बॉडी का, वो एक नॉर्मल लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक कि लोग एक एक ग्राम, क्या लोग एक एक मिलीग्राम को ऑब्जर्व करके, को कैलकुलेट करके खाना खाते हैं, जिन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा। आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो उनका बॉडी वेट आपको देखकर एहसास हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान का बॉडी वेट एकदम से गिर जाता है, एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खाना ही छोड़ रखा है, एक प्रकार से खाना ही त्याग देता है। वो दिन भर में दो चम्मच एवरी मील खाएंगे, या फिर वो इतना कम हो जाता है, दो दो चम्मच एवरी मील की जगह, कुछ तो ऐसे सीवियर केसेस होते हैं रुचिका, जहाँ पर सिर्फ वन स्पून इन्हें देखा गया। और अगर आप उन्हें बोलो कि इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, यू शुड ईट इट, तो उन्हें एनजाइटी हो जाएगी, इतनी एनजाइटी कि उनको लगेगा कि नहीं, अगर मैंने ये खाया तो मतलब आई विल डाई, आई डोंट वॉन्ट टू ईट इट। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर में
0: तो सर्वाइव करना भी मुश्किल,
1: बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिसऑर्डर यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा देखा जाता है दैन इन इंडिया, बट ऐसा नहीं है कि अगेन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं। जैसे 2-3% ऑफ पॉपुलेशन डज एक्सपीरियंस ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो या तो ये कम्प्लीटली अपोजिट है जो आपने सोचा।
0: बिल्कुल, रीजंस कुछ और हो सकते हैं, है ना? मतलब कि अगर हम यहाँ की बात करें कि यहाँ पे जैसे 2-3% की हम बात कर रहे हैं, तो मे बी रीजंस वही डाइटिंग और पतले होने की टेंशन या ये।
1: देखिए, डाइटिंग जो है ना, वो तो शुरुआत होती है, वो तो बस एक सोच होती है, वो एक माध्यम होती है। समझ रहे हैं? इंसान को पता थोड़ी चलता है कि उनका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने वाला है।
0: बिल्कुल।
1: तो सरफेस लेवल पर इंसान को ऐसा लगता है, और ये बहुत ही लॉजिकल और एक्सेप्टेबल सा एक रीजनिंग लगती है कि नहीं, आई एम ऑन अ डाइट एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस दिस दिस। बट वो जहाँ पे रुकनी चाहिए, जहाँ पे उसको थमना चाहिए, वो वहाँ नहीं थमती। इट टेक्स द पर्सन टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ इट, कि जहाँ पर उस चीज़ की इंटेंसिटी, जो एंजाइटी की इंटेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो ड्यूरेशन है ऑफ नॉट ईटिंग, उस पीरियड का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। और जो फ्रिक्वेंसी है ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर थॉट कि मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, या फिर मुझे मतलब खाना है, खाना है, जो भी, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर डिसऑर्डर, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है। तो बेसिकली द स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, दे हैव प्री ऑक्यूपाइड नोशंस, प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स अबाउट मुझे खाना खाना है या नहीं खाना है, या मुझे कितना खाना खाना है, मैं पतला हूँ या मोटा हूँ। ऐसे में जब व्यक्ति को ये भी लगता है कि मैं जो हूँ, मैं हेल्दी ही दिख रहा हूँ, बस लोगों को नहीं लग रहा कि मैं हेल्दी हूँ, बट पर्सन अपने आप को हेल्दी ही समझता है, उनको लगता है आई हैव टू रिड्यूस अ फ्यू इंचेस एज वेल। तो वही बॉडी इमेज से उनका अगेन काफी ज्यादा एसोसिएशन भी रहता है।
0: तो मतलब कि हम अगर ओवरऑल पूरे इन टाइप्स की भी बात करें या पूरे ईटिंग डिसऑर्डर की बात करें, तो जो मेन इफेक्ट करता है वो हमारा स्ट्रेस ही इसको इफेक्ट करता है।
1: डेफिनेटली।
0: तो स्ट्रेस की वजह से जो है फिर हमारी पूरी दिनचर्या एक तरह से वो बिगड़ जाती है।
1: अब देखिए, स्ट्रेस है तो कोपिंग मैकेनिज्म्स भी होंगे, बट अगर हमारे पास पुअर कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, तो इंसान उन्हीं को ही यूज करेगा ना, है ना? क्योंकि हमें तो नहीं सिखाया गया कि कोपिंग स्किल्स, बेस्ट कोपिंग स्किल्स क्या, कौन कौन सी हैं, और हमारे लिए स्पेसिफिकली कौन सी यूज होंगी। तो इंसान के पास उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में जो भी अवेलेबल रहता है एज अ डिफेंस, वो उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है, बी इट अनडूइंग, बी इट डिस्प्लेसमेंट, बी इट समथिंग एल्स। तो अल्टीमेटली हमें ये ख्याल रखना है कि हमें अवेयरनेस में रहना है। जितना ज़्यादा एक इंसान अपनी अवेयरनेस में रहेगा कि क्या चीज़ें हैं जो उनके एक एवरेज जो हेल्थ कंसर्न है वो उससे बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं या फिर उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें नुकसानदेह हैं। अल्टीमेटली वही बात है ना कि आप खाना खाएं, आप खाना खाकर खुश रहें, है ना। खुश रहने के लिए खाना खाएं वो ठीक नहीं है, और खाना खाकर दुखी हो जाएं वो भी ठीक नहीं है। अल्टीमेटली बस ये है कि आप खाना खाएं और खुश रहें।
0: बिल्कुल खुश, वैसे भी दो वक्त की रोटी के लिए ही तो हम सुबह से लेकर शाम तक बस भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो दो वक्त की रोटी खाकर भी अगर हम खुश ना रह पाए तो फिर क्या जिंदगी में क्या ही हमने पा लिया। तो कहते हैं ना दोस्तों, ये जो धन दौलत है, ये जो पैसे हैं, ये सब यहीं रह जाएंगे, जो खुशी के चार पल हैं बस वही हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो मैम, आप क्या इस पूरे कंक्लूजन में हमारे दोस्तों को, इस ईटिंग डिसऑर्डर की हम बात करें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे साधारण से शब्दों में?
1: जैसा हमने बोला, स्ट्रेस है इसलिए खाना नहीं खाए, खाना खाया है और इसलिए स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा भी अपने साथ ना होने दें
0: जी।
1: खाना जो खाया है उसके बाद खाना खा के उस गिल्ट में ना जाए। तो अपने आप को आपने इन तीन चीजों से बचाना है। जब आप अपने आप को इन तीन चीजों से बचा लेंगे तो आप जब भी खाना खाएंगे, जिस भी मात्रा में खाएंगे, आप प्रसन्न होकर खाएंगे और प्रसन्नता ही रहेगी आपके पास खाना खत्म होने के बाद, है ना। तो अपना आप इस प्रकार से थोड़ा अपने ईटिंग हैबिट्स हो गए या फिर आपका जो एक रहन सहन का तरीका हो गया, आप उन चीज़ों का थोड़ा इस प्रकार से ध्यान दें और हेल्दी खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं। ना ही अपनी मात्रा को बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम करें। तो बस यही है रुचिका, हम तो ही चाहते हैं कि हमारे सारे जो मित्र हैं वो सब खुश रहें और स्ट्रेस जो है, जो भी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, उस उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उनसे डील करने के लिए बेटर कोपिंग मैकेनिज्म्स का यूज करें।
0: जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। नहीं भी समझे होंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं आप सभी के साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी जानते ही हैं, वैसे तो एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आपको अभी भी मन में कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं इस विषय से संबंधित, कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है आपके दिमाग में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा
1: 9354134057।
0: जी दोस्तों, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फोन पे शायद हम उतना अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं, उतना खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे सेंटर भी आ सकते हैं। तो सेंटर का पता रहेगा,
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला विलेज, धर्मशाला।
0: जी दोस्तों, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आपके सवालों के सुझाव आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो बेफिक्र होकर या तो कॉल कीजिए या तो फिर सेंटर आकर अपनी समस्या का समाधान पाइए। तो आज इस बातचीत के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रेयसी को।
0: फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है, एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था एयरपोर्ट का निर्माण और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा भीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं। मित्रों,
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
5: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
6: बहू, ठीक किया है तूने।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: टेस्ट
1: टेस्ट
2: टेस्ट।
3: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
9: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
10: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
5: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने।

0: चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट
2: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
3: टेस्टिंग
4: टेस्ट
3: टेस्ट
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
8: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
9: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी।
10: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
11: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

0: नमस्ते नमस्कार, कानवी देशमलव 2 MHz पर ए है तो हाँ सारे अंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक दर्शो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे अंदा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी कन्ने तो हाँ सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कन्ने जुड़ी सकदे, कन्ने हमेशा ए दुआ हंदी रहंदी है कि हमेशा हर इंसान खुश रहे, या हर इंसान वास्ते यही दुआ अहाँ करते न कि खुश रहना अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कन्ने नए महीने दा आगाज़, अगस्त महीने दा जिहड़ा आगाज़ है से शुरू हुई है, कने आज है 1 अगस्त 2026 जिहड़ा कि शुरू हुई है। कने तुहां जरूर जितनी भी खुशियां न ते से तुहां जो मिलने, वैसे तो हर दिन अहां वास्ते खास होंदा। कने पहले श्रोता अहां कने जुड़ चुके हो न, कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद
0: जी।
1: ठीक है ना
0: जी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां क्या काम कार लगे या क्या करा दे?
1: प्रोग्राम में इंतजार दे करा दे कने लेट हो
0: जी। अच्छा, प्रोग्राम में तो इंतजार करा दे थे कि कालू दिया 2 बजे ना कालू दिया इस कार्यक्रम करने जुड़ देना जी। जी तो आज क्या
1: मेरा इंतजार है ना 2 बजे।
0: जी जी
1: बस ते शुरू हो गया कने हो
0: जी
1: सुन रहे ना
0: जी। तो हम आवाज बड़ी कम कम हो दी जी।
1: आवाज कट हो रही
0: जी जी
1: हूँ ठीक है
0: जी? उन उन ठीक है जी।
1: हल्ले भी करते हैं
0: जी उन उन थोड़ी ठीक है ना जी? उन जेड़ ऐसे ठीक है जी।
1: उन ठीक है ना?
0: हाँ जी हाँ जी जी। तो क्या हाल चाल है जी? दाढ़िया जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी।
1: क्या बरखा हुई तुम्हारे को है?
0: जी बड़ी ज़्यादा हुई जी। जी तो मेघनाथ जी जी कुंडिया गीत सुन
1: ले कमानियां खड़ियां या खोटियां खानियां दो रोटियां
0: जी। अच्छा, कर ले कमाइयां खरियां चाहे खोटियां पर खानियां दो रोटियां।
1: दो रोटियां
0: जी। गीत तो बड़ा प्यारा है, या गीत बोली सकदे या भजन आहा बोली सकदे इस जो ना जी?
1: भजन ही है
0: जी जी भजन।
1: ये कमाइयां खरियां करके तो ठीक है
0: जी जी। रेडियो गुंजन दा वर्डे भी जेड़ा है से आज है ना जी? जी जी जी। तो तुहां
1: बहुत बहुत मुबारकां, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया जेड़े तुहाडे सुझाओ जानकारियां
0: जी,
1: इससे बड़ा बड़ा फर्क पिया कि आदमी है ना
0: जी जी। तो तुहां जेड़ा ऐसे रेडियो गुंजन सुनना कालू ते शुरू किता था?
1: मुझे तो काफी देर हो गई है, लेकिन थोड़े दिन में बंद किता ने, मैं रोज ही करदा फरमाई
0: जी जी।
1: अच्छा तुहाडे ने भी
0: जी, चलो अच्छी गल है जी।
1: अने प्यागा 4 बजे लगाएंगे
0: जी।
1: पहले के होंदा पाठ माह मतनियां दा कने इहदा शनि देव दा
0: जी जी
1: अभी लगे होंदा ना
0: जी जी।
1: इसके बाद जी तुहाडा नंबर आई जांदा, बोले सच्ची जी आ गए कने भजन सुनाएंगे
0: जी जी।
1: हाँ?
0: जी ता तो हाँ रेडियो दे फैन है ना जी? जी ता और क्या तो हाँ बाकी बाकी प्रोग्राम भी सुन दे तो
1: हाँ सुनना
0: जी।
1: सब चीज बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी।
0: जी तो और क्या, तो हाँ चांदे की इससे भी बेहतर अहाँ करने।
1: इससे बढ़िया करिए तो बड़ी अच्छी गल है, बहुत बढ़िया।
0: जी
1: चले देखा ना,
0: जी
1: बड़े लोग मतलब इन्हें दिल से होगी,
0: जी
1: इन्हें
0: कन
1: सुना रहे ना,
0: जी
1: इतने लोग तो तुम्हें फरमाइशा मिल जाएगा, लेकिन सारे अच्छा लगता ना,
0: जी जी
1: कहीं कहने अच्छा नहीं लगे ना, कुछ नहीं फरमाइशे दसा।
0: जी ता तो हाँ श्रोता ही क्या बोलना चाहेंगे कि रेडियो तो हाँ भी सुना करा। वैसे तो युवा जी
1: कुछ पता क्या है,
0: जी
1: मेरे तुहरे सारे कर्मचारी ना
0: जी
1: इन्हों का बोल बाल बहुत प्यारा, सारे में बहुत
0: जी
1: अच्छा,
0: जी जी
1: बहुत बढ़िया सुझाव, बड़े
0: जी
1: बढ़िया दीजिए सब।
0: जी धन्यवाद जी। तो हाँ इतना ज़्यादा रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दें दे, प्यार हमेशा इनने ही रहना चाहिए ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, मैंने
0: जी
1: बाकी दस्या भी पहली
0: जी
1: गल सुना तुम्हारे, बढ़िया बढ़िया मुबारक सारे स्टाफ को, सारे टीम रेडियो, हाँ जी
0: जी धन्यवाद
1: सुनने वाले हैं सुनाने वाले हैं।
0: जी। तो हैं भी
1: अच्छा
0: बड़ी सारियाँ मुबारक हो ना जी।
1: जी
0: जी तो मेघनाथ जी
1: ठीक
0: जरूर तोहदी चीटा फरमाइश है से तोहां तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी
1: है,
0: तोहां दा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी तोहां दा भी। तो श्रोताओं तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने तो इसी गूंज कहने, ये जड़ा गूंज है ना उसे हर इंसान तक पुजती है, पर आह किस तरीके ने इस गूंज को सुन दे ना उससे यहाँ पर निर्भर करते हैं। तो ज़रूर जेड़ा शुरुआत है या आगाज़ है या फरमाइश है सभी तो वहाँ तक पहुँचानी है तो सुन दे निशा फरमाइशा जो कने अपने कार्यक्रम का जेड़ा आगाज़ है सभी करते ना इस प्यारे दे भजन करने है।

0: है तो हाँ सारे तो अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश इसे ही फरमाइश करने हाँ फिर ते वापिस तो हाँ तक पूजियन कने तो हाँ सारे भी मेरी गल बात करने जरूर जुड़ी होनी ना। 1 अगस्त दाई दिन कुथी ना कुथी गल करिए रेडियो गुंजन धर्मशाला दी तो आज जिड़े से सबसे खास दिन है। यहाँ ये बोली सकते कि 9 साल जिड़े से कंप्लीट हुई हो ना कहने जरूर आज जिड़े से यहाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला दा जिड़ा जन्मदिन है से जरूर बना देन कहने इसी गुंजन दे माध्यम ने अहाँ अपनी जिड़ा आवाज़ है से तो वहाँ तक पहुँचा देन या अपना जिड़ा माटी दी मेह कार्यक्रम में कुथी ना कुथी यहाँ अपनी संस्कृति जो भी जरूर तुहां तक पहुँचा देन। तो श्रोताओं तुहां सारे भी अपने जेड़ा विचार हैं से अहाँ कन्ने साझा करी सकते अहाँ कन्ने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते। गलबात अहाँ हमेशा करते रहते हैं चाहे से युवा की गल है चाहे बच्चों की गल है चाहे प्रकृति की गल है चाहे कोई भी गल है चाहे साफ सफाई की गल है हमेशा कोई ना कोई जड़ा गलबात है से तुहां तक अहां पहुँचाते न कने तुहां जरूर गलबात जड़े से सुनते भी हैं। तो इन्हें ही अपना जड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला जो अपना जड़ा प्यार है से हमेशा दिया कने रेडियो दा अगर अहां गल करिए रेडियो जड़े से कितना फायदेमंद है ज़्यादातर बुज़ुर्ग जड़े से रेडियो सुनना पसंद करते हैं या कुथी ना कुथी युवा पीढ़ी भी सुनती है या बच्चे भी सुनते हैं पर रेडियो की एक खासियत है कि अहां दा जेड़ा टाइम है ना टाइम दी बड़ी ज़्यादा बचत होंगी रेडियो कन्ने कन्ने अहां अपने जेड़ा बाकी काम मन सभी करी सकते इसी कन्ने अहां दे अगले जेड़ा श्रोता है ना तिना कन्ने करदे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: धन्यवाद मैडम जी ठीक ठाक है मैडम जी।
0: जी
1: आज का बर्थडे है मैडम जी गुंजन एफएम रेडियो ना
0: जी
1: बड़े-बड़े सारी मुबारक हो सर जी पूरे स्टाफ सर जी।
0: जी धन्यवाद जी तुहांदा इतना ज्यादा तुहां रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दिंदे ना जी।
1: हां जी मैडम जी।
0: जी जी तो सुनील जी क्या हाल चाल है कोठिया जलोट आलियां दे।
1: बस ठीक है ना मैडम जी प्यागा बरखा हुई
0: जी
1: बड़ी भारी का ना आन धुप लगी है मैडम जी।
0: जी अच्छा उन जेड़े से धुप लगी पियो।
1: हां जी हां जी मैडम जी।
0: जी तो सुनील जी तो हां सारे कार्यक्रम सुन दे।
1: हां जी मैडम जी सारे सुनते।
0: जी तो तुहें क्या रेडियो दा जिड़ा फायदा लगदा या समय दी बचत होंदी क्या तुहां जो खासियत जेड़े से लगदी।
1: देखा मैडम जी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलदी है मैडम जी समाचार मिलते हूँ टीवी दिखते मैडम जी टीवी कुछ फेक न्यूज़ा भी होनी है
0: जी।
1: रेडियो जी उन्हें बिल्कुल स्टिक जानकारी होनी है कहना न्यूज बिल्कुल सही होनी है मैडम जी। हाँ जी मैडम जी कहना ना ही भार ने मैडम जी कुछ ही ले जा चुकी किसे होने का चलो मोबाइल ने सुनी लिया
0: जी
1: रेडियो ले जा चाहे खेत च ले जा कुछ ही ले जा मजे सुन दे रहे
0: अपने काम भी कर दे रहे।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी हूँ टीवी है बहंगे मैडम जी दीदी दा हुण बस टीवी दिखना तो मैं कोई काम कार नहीं हुंदा मैडम जी।
0: जी टीवी करने तो कोई भी जी
1: इदी नहीं गल है मैडम जी अपना काम भी कर दे रहे हैं
0: जी
1: तन मनोरंजन भी हुंदा रहंदा मैडम जी।
0: जी कने एक एक ए भी है कि अपनी पसंद दा गीत भी तोहा सुन दे।
1: हाँ जी मैडम जी
0: ए ता सबसे बड़ी खुशी मिलदी तोहा जो
1: खुशी है मैडम जी खुशी। हाँ जी मिलदी मैडम जी पर एक रिक्वेस्ट है मैडम जी तोहां ते
0: जी
1: चलो तो हम चलो एक जिया हूं जिया एक गद्याली चलो चलिया प्रोग्राम एक पहाड़ी प्रोग्राम एक हिंदी प्रोग्राम भी होना चाहिए मैडम जी लाइव
0: जी। अच्छा जी
1: चलो तो हम लागे नहीं करना जिया गुड इवनिंग धर्मशाला जिया संजा का होता प्रोग्राम या भ्यागा का रखी दिया
0: जी।
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी जरूर जी कोशिश करके जी
1: जरूर मैडम जी रिक्वेस्ट कर सकते मैडम जी।
0: जी जरूर जी
1: बाकी मैडम जी बिल्कुल अच्छे प्रोग्राम तो होंगे कोई कमी नहीं है मैडम जी।
0: जी सारे प्रोग्राम सुनते।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो सुनील जी आज तो हो कुंदिया अपनी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे
1: तो हाँ मैडम जी आज अपनी पसंद का सुनवाई दिया।
0: जी अच्छा, मेरी पसंद का गीत सुनना
1: हाँ
0: है।
1: जी मैडम जी।
0: जी जरूर, मेरी पसंद का जिहड़ा गीत है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: धन्यवाद मैडम जी, नमस्ते
0: जी
1: जी।
0: जी तो श्रोताओं, तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दें अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर दे न गल बात। हेलो,
2: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
2: जी महाराज? ठीक ठाक जी
0: जी। ता क्या काम कार तुहां छेड़िया, क्या करा दे?
2: कोई काम कार नहीं छेड़िया महाराज जी, बस बैठे हुए है कि प्रोग्राम में इंतजार लग गया।
0: जी
2: सुना कर दे है ना, हम करी दिख दे फोन।
0: जी अच्छा, प्रोग्राम में सुना दे थे, इंतजार लग गया था।
2: हाँ जी, क्या ये ना टीवी है तो मैं दिखता नहीं जी। मैं नहीं दिखता ना, दिखना तो कोई इच्छा या कोई डर नहीं, फिर लग गया कोई था ही किता नहीं। हाँ जी
0: जी, चलो अच्छी गल है जी। हाँ, रेडियो ने अपना मन लगाया, कुछ जानकारियां तो वहां तक पूछ दिया या कार्यक्रम तो वहां तक पूछ दे।
2: बिल्कुल महाराज जी, बड़ी सोनी सोनी कार्य जो सुनाते हैं जो है तो हाँ कुछ तो हाँ अहाँ जो सिखाते हाँ सीख दे।
0: जी जी
2: हाँ जी
0: जी। तो हरदेव जी और नोईता जी?
2: नोईता जी कोई नहीं महाराज जी, राति अंबर इन सकना बरखा लगी नहीं, नेरे में जिम लगी भी आया कोई 4:30 दी
0: स्थान
2: पहले तो देवी देवते जेड़े थे ऐसे जगह बसते है जिथे कोई बंदा नहीं आवे।
0: जी जी,
2: तो जो देवी देवते ठीक बसते है पर अहां लोकां जिथे जाई करी मतलब कोई दुकाना खोल लिया कोई क्या कोई किन्या कोई किन्या लेता करना, तो देवी देवते के सब दुखी हो गया।
0: जी जी दिखा
2: हां हां जी
0: जी जी,
2: कहां यहां नहीं हुआ था करदा
0: जी। अहां कोशिश भी बड़ी कर दे चाहे हाँ कोई भी मंदिर है, आदि हिमानी चमंडा की गल करिए लगभग तिथु बड़े ही घट जड़े से भक्त जन पुजते थे ना जी,
2: जी
0: बड़े ही कम मतलब बोली सकते हाँ, पर उन्हें दी गल करिए हर कोई या हाँ पता नहीं अपने शौक वास्ते जानते न कि क्या या हाँ श्रद्धा भाव ने जानते। ठीक है, अगर श्रद्धा भाव ने जानते तो बड़ी अच्छी गल है कि श्रद्धा भाव ने जा दे न, क्योंकि हर दिन हाँ कोई ना कोई न्यूज सुन दे न या कोई ना कोई सुनने जो अहें मिली जाते कुछ ना जी।
2: हाँ जी
0: जी, तो कुछ ना कुछ अहाँ श्रद्धा भाव बिल्कुल ही खोई थी ना जी।
2: हाँ जी
0: जी,
2: अरे इंसान जो सोचना चाहिए नहीं कि हम मंदिर पर जाएंगे तो मतलब हाँ कोई गंद गुंद नहीं फान देते
0: हैं। जी जी, सफाई दा पूरा ध्यान रखना चाहिए दा।
2: बोल दे नहीं देवी देवते तो तोंदे तो तू सफाई हुआ है
0: जी, सफाई होंगी।
2: हाँ जी, अगर अपने दे दे दे
0: जी, हाँ जी अपने घरे दी गाल करिए तो हाँ घरे अगर सफाई नहीं रख देना तो हाँ कुछ ना कुछ अच्छा नहीं लगता कि सफाई नहीं है या हाँ सफाई नहीं की है ना जी, सफाई कर देना तो तिने यहाँ दा सभी दुआ घर है अगर हम मंदिर जा देना तो जरूर सफाई दा जिड़ा ध्यान है से रखा।
2: हाँ जी,
0: खुद भी रखा कने अगला जिड़ा व्यक्ति है अगर तुह जो लगा दा किसे गलत करा दा या गंदगी फैला दा तो तुह जरूर तिस जो भी बोला।
2: महाराज गल ऐसी है नी, एक बंदा चिंगे करता हा चल तो किसी के बोले तो लगे लाला तो झाड़ू छड़ी तो लगे लाने ला बोले तू कर बोलिया है ना गले कोई गल नहीं बहू मैं कर लंगा मैं मेरे को तो हसी कसी आने
0: जी, जी, जी।
2: मैं झाड़ू चुके गल लगी भी सोता देना है एक आया दूसरा बंदा बोलिया तू सेवा तुझे दी तुझे किसी बोलिया ना गले कोई गल नहीं ता के होया मैं तेनी झाड़ू मेरे ते ले लिया बंदे भी अच्छे दे अच्छे इनके।
0: जी सही है ना कि सोच पर निर्भर करता है।
2: हाँ जी
0: जी, ता आज तो कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
2: कल तो जनाब वहाँ सुनाया नहीं था, आज मुझे सुनाई दिया राम जप लै ओखिए जिंदे ओखिए वेले कम कम आना
0: जी, राम जप ले ओखिए वेले कम आना।
2: हाँ जी
0: जी, जरूर है भजन तो तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा।
2: धन्यवाद महाराज जी
0: जी। तो श्रोताओं तो सारे जो भी लेकर चलते हैं अगली फरमाइश दी और तो सारी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸੀ ਗੂੰਜ ਕੰਨੇ ਜੁੜਿਓ ਨਾ, ਕੰਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸਾ ਗੂੰਜ ਕੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 91.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਪਰ। ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਕੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ अगले जरा श्रोता न सियाहा करने जुड़ चुके हैं न, कर दें तिना करने गल बात। हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी। तो
1: मैडम जी मुबारक हो आज
0: जी, तो हां जो भी बढ़िया सारी मुबारक हो जी।
1: हां जी हां जी, आहे तो बढ़िया मुबारक जी, तो आहे तो गुंजे पूरे परिवार जी नमस्कार नमस्कार जी।
0: जी धन्यवाद जी। तो हां दा
1: और मैडम जी क्या हाल है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हां कुथु ते बोला दे कने तो हां दा ना?
1: हां जी ओते बोला जी, मेरा नाम परशुराम है
0: जी। योल ते बोला दे?
1: हां जी ठीक है, चटायर ते बोला दे।
0: जी ता क्या हाल चाल है जी योल आलेयां दे?
1: सब ठीक है जी मैडम जी, सब ठीक है
0: जी। नोई ता जी?
1: हां जी सब ठीक है जी मैडम जी।
0: जी ता
1: मेरा तुहाड़ी
0: कदे लगदे तो हन जो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे कार्यक्रम?
1: जी हां सब सुनदे जी,
0: सारे प्रोग्राम
1: 24 घंटे चल रहा साडा रेडियो
0: जी। ऐसे 24 घंटे चिड़ा ऐसे चलाई के रख दे तो जी तो क्या रेडियो दी तो जो खासियत लगदी?
1: हां जी रेडियो दा सब बड़ी खासियत है
0: जी, पर आज कने दौर दी गल करिए तो चलो कुथी ना कुथी युवा पीढ़ी सुन दे भी है नहीं भी सुन दे ने, क्योंकि हर कुछ मोबाइल फोन है ना जी।
1: बिल्कुल जी मोबाइल के भी सुनते रहते
0: जी,
1: आजकल हर आदमी सुनता ही रेडियो नहीं पेन सुनना आजकल
0: जी, धीरे धीरे सुना दे ना जी, सारे सुनना भी बनता है ना जी, क्योंकि अगर हाँ कुथी ना कुथी अपनी संस्कृति करने जुड़ना है या अपने
1: परिवार पूरा सुनता जी।
0: जी ता तो बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, तो हंदा इतना ज्यादा तो हाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दिन दे ना जी।
1: हाँ जी नर जी, कोई
0: जी
1: बजरंग बली भजन है कोई?
0: जी जी
1: कसाई में कोई होगा बजरंग बली का?
0: जी जी है बजरंग बली दा गतियाली है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जरूर जी। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੇ ਸਭੀ ਆਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਲ ਪਰ ਕੋਲ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਆਹਾਂ ਕੰਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਪਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਨੇ ਕਰ ਦੇਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕੁੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕੰਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਹਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕੰਨੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰੋਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ। ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।
0: ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ
2: जी? धन्यवाद जी। सुनो बोलते हवाओं में गूंजे सुरों का तराना
0: जी,
2: दिलों को जो जोड़े वो है आशियाना। मुबारक हो आपको, आपके ये जश्न गुंजन सदा आबाद रहेगी सुरों का ठिकाना।
0: जी वाह वाह वाह जी, बड़ी प्यारी लाइना जेड़ा ने से तो हाँ बोलिया ने जी। बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा रेडियो गुंजन पूरे टीम दी तरफ ते ना जी।
2: जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ 9 ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਿਓ।
0: ਜੀ ਜੀ
2: ਜੀ, ਔਰ 9 ਸਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੀ ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲ ਤੀ ਕਹਾਂ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ।
0: ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
2: ਜੀ
0: ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਖਾਸੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ
2: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
2: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰੇਡੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਬੋਲਦੀ
0: ਜੀ।
2: ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਹਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਬੋਲਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਘੱਟ ਪਈ ਜਾਣੇ
0: ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਘੱਟ ਹੈ
2: ਜੀ।
0: ਜੀ, ਤਾਂ ਔਰ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਰੇਡੀਓ ਕੰਨੇ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ?
2: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: ਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆਹਾਂ ਦੇ?
2: ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ।
0: जी
2: है ना,
0: जी
2: डिमोटिवेट कर नहीं होता बंदा होंगे यार,
0: जी
2: कई बार कई कई कई कितनिया गल कुछ भी
0: जी
2: नेगेटिव दिमागे च आई जाता
0: जी जी
2: विचार, तो बंदा जो है अगर रेडियो सुनगा तो शायद कभी भटकी नहीं सकता
0: जी, क्योंकि वैसे भी बोलते ना कि मन तहां दा चंचल है ना जी, से कुछ भी
2: जी
0: भटकी सकदा,
2: जी बिल्कुल
0: पर हाँ अगर रेडियो कन्नै दिल लगाया या रेडियो सुना देना, रेडियो भी सुना कन्नै अपने काम भी करा,
2: जी
0: रेडियो
2: जी
0: अहाँ जो ये नहीं बोलता कि तो हाँ अपने काम छड्डी करी मेरे बखे बैठी आ, से बिल्कुल नहीं
2: बल्कि रेडियो च हाँ
0: बोलता
2: अगर रेडियो सुनते सुनते कोई काम
0: जी
2: करे तो उस कम्मे दा पता भी नहीं चलता कि कल उसे काम करी छड्डिया ना।
0: जी चाहे तो हाँ सिलाई करा देन,
2: जी
0: तो हाँ कपड़े भी सी लिया, रेडियो भी सुन दे रहा, जानकारी भी तो
2: हाँ
0: वहाँ तक
2: जी
0: पूछ जाती, चाहे से मौसम दी है चाहे कोई भी जानकारी है ना
2: कोई भी
0: जी,
2: जानकारी हाँ जी
0: कने कोई अगर टॉपिक है से भी तो वहाँ तक पूछ जाता
2: जी बिल्कुल,
0: जी
2: और हाँ जो मौका ही मिलता गलाने का
0: जी ये तो सबसे बड़ी खासियत है
2: जी बिल्कुल, हाँ भी अपने विचार रखी सकते नहीं तो
0: जी जी जी
2: वाने
0: जी तो इंदु जी आज कुंडिया गीत तो हाँ सुनना है
2: अज जिया हाँ दी कने रेड़िए दी डोर चढ़ी ताई गाना सुन लेना दिला दी डोरी, ये भी हाड़ी दिला दी डोर है ना
0: जी जरूर जी, दिले दिले दी डोर है ताई तो हाँ दिले तक पुजते ना जी, रेडियो गुंजन तक पुजते तो
2: जी
0: हाँ जी जरूर, एगी ते फरमाइश तुह तक पहुँचा दें जी, चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
2: जी तुहाते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी
0: जी, श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, तो श्रोताओं फिरी ते थोड़ा दिया कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां सारे जोई फिरी ते ले करी चलते न अगली फरमाइश की ओर, सुन दे अगली फरमाइश तो सारे भी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंधी, कने जितने भी श्रोता न तिना दी प्यारी प्यारी गूंज।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन फरमाइश। इस भजन की फरमाइश आहुं जो आई वे डाट चमंडा ते कने तिना दा ना वे हरदेव जी। तो जरूर हरदेव जी तक अहां ये गीत ये भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया। कने जिंदगी दा जेड़ा सफर है से तो हाँ जरूर जेड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्ने भी अपना जेड़ा मन है से जरूर लगाया होना है। कन्ने अगर रेडियो की खासियत अगर अहाँ तो तक पहुँचाते न तो अहाँ दे जेड़ा श्रोता न सभी अपने जेड़ा सुझाव हैं से जरूर दें देने कि रेडियो दा हमेशा हर जगह फायदा है। रेडियो अगर अहाँ अपना रेडियो सेट ऑन रख देन रेडियो सेट ऑन करी करी अहाँ अपने जेड़ा काम मन चाहे से सिलाई है चाहे खाना है चाहे कोई भी काम है चाहे खेती बाड़ी दे चाहे कोई भी काम है से यहाँ आराम में नहीं करी सकते। कन्ने इसी कन्ने मनोरंजन दा जेड़ा साधन है सभी रेडियो है अपनी पसंद दे जेड़ा गीत हैं से तो हाँ सुनी सकते अपनी बोली कन्ने जुड़ी सकते। अगर तो हाँ जो लगा दे कि अपनी बोली कन्ने जुड़ना है या अपनी गलबात अपनी बोली च रखनी है तो जरूर तो हाँ इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते। कन्ने अपनी जेड़ा गलबात है से रखी सकते कन्ने अपनी जेड़ा पसंद गीत हैं लोक गीत हैं सभी तो हाँ सुनी सकते क्योंकि अपनी बोली की अपनी खासियत है ना। वैसे भी तो हाँ तक कल मैं न्यूज़ दसी थी कि जितने भी विद्यालय न तिथु या छठी या आठवीं जेड़ा क्लास के विद्यार्थी हैं तिना जो संस्कृति के बारे च भी दसना है कने जेड़ा अहाँ का खान पान है जेड़ा अहाँ के व्यंजन हैं तिना के बारे च भी जरूर तिना जो जेड़ा है से इस दे बारे च दसना है तो दसना भी बनता है। कने अहाँ भी जरूर तो जो रेडियो के माध्यम ने हर जेड़ा जानकारी है या खान पान है से तुह तक पहुँचाते रहते हैं जेड़ा सीजनल फ्रूट हैं जेड़ा कुदरत ने या प्रकृति ने अहाँ जो दिते न सभी अहाँ जरूर तुह तक तिना विषय पर भी जेड़ा चर्चा है से कर

श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत, प्यारी दी फरमाइश। तो श्रोताओं जानकारी तो तक पहुँचा देन, तो हाँ भी बेसफरी ते जेड़ा इंतजार है से कराते उन्हें कि जानकारियाँ कल दी यहाँ तक पहुँच दियाँ ने, क्योंकि समय अनुसार जानकारियाँ भी तुह तक पहुँचाना जरूरी है। तो इसी हफ्ते की अहाँ गल करिए या इसी सप्ताह की गल करिए, जेड़ा हिम बस लैस कार्ड है से बनना जेड़े से शुरू हो जाने न, तो ज़रूर तो सारे भी हिम बस कार्ड जेड़े से अप्लाई करी सकते, कने इसी सप्ताह ते बनना जेड़े से शुरू हो जाने न, क्योंकि जितने भी जेड़ा बस च ट्रैवल करती न तिना वास्ते ये जेड़ा सुविधा ऐसे लैनी है। तो तुहां अगर यह सुविधा का जेड़ा फायदा ऐसे लेना चाहते न, तो ज़रूर तुहां इदी वास्ते जेड़े से अप्लाई कर सकते, कने जेड़ा ग्रीन कार्ड है या येलो कार्ड है या समान कार्ड है, इसे सारे ही यानी कि एकीकृत जेड़ा अहाँ बोली सकते कि हिम बस प्लान्स कार्ड जेड़े से शुरू करने का जेड़ा निर्णय है से ले है, कने इस जो बनाने वास्ते जेड़ा कार्ड जो बनाने वास्ते जेड़ा गल करिए कि कितने पैसे लगने न या क्या जेड़ा किन्ना हाँ इस जो बनाई सकते, तो इस जो बनाने वास्ते जेड़े से 365 रुपये जेड़ा से लगने न, कने तो ज़रूर तुह सारे भी अप्लाई जेड़े से करी सकते, कने इदे वास्ते जेड़ा एक महीने का जेड़ा समय है से दिते है, तो ज़रूर तुह भी अपने जेड़ा जेड़ा कार्ड वास्ते अप्लाई जेड़े से करी सकते, कने 50% छूट ऐसे पाई सकते। तो ये जानकारी तुह तक पहुँचाई है, कने फ्री ते हम वापिस अपनी गलबात उपर आई आते न, क्योंकि गलबात कन्ने कन्ने अहाँ जो समय की ओर ध्यान जाता है कि समय भी अपनी रफ्तार लेकर चल रहा है, तो समय के अनुसार अहाँ भी चलना है, क्योंकि श्रोता जेड़ा से जरूर इंतजार करा दी न कि अहाँ दियाँ जेड़ा फरमाइशां से तिना तक कालू दियाँ पुजदियाँ न, तो ज़रूर अगली फरमाइश अहाँ पहुँचाते न राधा कश्यप जी तक, कने से रहने वाले न कांगड़े ते।

दर्शोत्तम तो सारे सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी देई फरमाइश समय जड़े सहाल थोड़ा दे है कने समय दे अनुसार चलना भी जरूरी है। इसी कने तो सारी अपनी रेडी दो शशि जो अनुमति भी दे दिया कने जानते जानते ये फरमाइश भी जरूर तुह तक पहुँचा देना।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: क्यों क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट
3: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
4: टेस्ट
5: टेस्टिंग
6: टेस्ट
4: टेस्ट
7: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
8: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
9: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
10: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
9: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सब की तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी।
13: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
14: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।
1: पामगरे सा गाओ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
5: तू अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने,

0: क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट
2: टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी।
5: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
6: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज, तू ही लाया इसे।

नमस्कार श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ तुंद अपना आरचे वेड़ी जो कि सचिन कपूर हाजिर हो चुके कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा हार्दिक अभिनंदन हा श्रोतों कैसे हैं तो है सब उम्मीद कर लो तो सब खरे भूणे सुरक्षित भूणे हिन और मोटे गल की खुश भूणे हिन श्रोतों खुश रहने की ऐसा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बहरहाल तो सब श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं 7081889 पर नंबर अक मौके फिर शेयर करना तू होगी 7081889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की ऐसो होने सकते हैं श्रोतों अपने क्षेत्र जानकारी किया सो होगी साझा कर सकते हैं। यह गल खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर बहुत जानकारी किया सो रेडियो मंच साझा करने लायक के श्रोता हूँ सो जरूर और जरूर भुआ ता बरहल जितने भी श्रोतन तैयार है सभी रहूँ तह दिल थो स्वागत करनू हार्दिक अभिनंदन करनू आप मुख्य फिर सभी रहा अच्छा तो आज कुछ खास हा जी बिल्कुल आज कुछ खास हा और क्या खास है सो तुसुआ है ज़रूर दस ले तो ये सभी ट्यून कर रहे इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के ना सो चल रही है अच्छा तो इस कार्यक्रम में सभी रा मोटा मोटा स्वागत है बड़ा बड़ा स्वागत है अच्छा तो आइए तो लेकिन चलते हैं तुसू सभी आ जाऊँ दसू करता कि अज अक अगस्त था और अज कुछ खास आशा तो जी बिल्कुल अज इन इस रेडियो जो चल रहे रेडियो गुंजन धर्मशाला जो चल रहे है ना सो पूरे 9 वर्ष कार्य कार्यकाल के सो रेडियो पूरा करो हा और एक कम्युनिटी रेडियो बिल्कुल तो सब हिरदन की खासकर अपने इस गाद्य कार्यक्रम जो किया सो है कस प्रकार हो गए प्रमोट करूँ कर दिन अपनी अपनी रूट्स होगे क्या ने सो है जुड़ रहे हैं श्रोतों अपने कल्चर होगे क्या ने सो है इस कार्यक्रम रे माध्यम तो जुड़ रहे हैं श्रोतों और बहुत अहम भूमिका की सो रेडियो है निभाई है खासकर इस प्रोग्राम को लेकर अगर हम गल करूँ श्रोतों तो यहाँ असो जानकारी क्या ना सो गदयाली मंच मुलिगन दिन है ना चाहे सो फिर रोज़ अप टू डेट जो जानकारी इन सोस हुए इस कार्यक्रम रे माध्यम तो मुड़ीगन दी इन श्रोता है ना एजुकेशन पर जाए सो एजुकेशन पर बोआ जाए सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोआ जाए सो अवेयरनेस HIV एड्स जो लेकर अवेयरनेस बोआ कैंसर जो लेकर अवेयरनेस बोआ अन्य जितने भी जानकारी हिन जो है अपनी बोली माखिया अपने कल अपने मनु जो कि ऐसो पहुँचन दिन और समय समय पर तू पता इस कार्यक्रम रे माध्यम तो है अपने कल्चर तो भी जुड़ रहे हैं जाए फिर सो है खंजरी रवाना लेकर ही जाए महिंदर राम जी उपस्थित हूँ जाए अन्य और कोई इंदे कलाकार भुन बिल्कुल कल्चरल सो की अनसो भी जुड़ रहे हैं फिर जाए तो है एजुकेशन रे गल करा धर्मशाला रे गल करा बेशक अपने क्षेत्र रे गल करा ता है बिल्कुल एडीएवे जो MLA इन तीनों भी लेकर ही इंदे हिन और मुझे लगता है कि आज वेड़ी गुंजन है अपना 9 साल पूरा करे हिन श्रोतों ता कार्यकाल के असो बहुत बढ़िया रेव हुआ और अह अपू भी कि असो रेडियो तो बहुत कुछ सीखे हैं छो तो मुंजोले वाकई में शब्द न रेंदे बयां करने वास्ते कि इस रेडियो के या सो असू कड़ी थों कड़ी तक किया सो पहुँचाओ और कड़ी थों कड़ी तक किया सो इनकी जान पहचान बनवाए हा सो थैंक यू सो मच रेडियो गुंजन धर्मशाला आज 9 साल पूरे हुए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं खासकर मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बदलाव करे श्रोतों जड़ी आकर शख्स जो कि असो कहने तक ने इंदा तो शब्द आ रहा पता होंगे तो शख्स जो इड़ियों लेकर और बड़े बड़े मंच पर लेकर गाना किया सो सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो री बदौलत है श्रोतों आजकनी डेट में जाए सो तो है होली इवेंट भुआ
धीरारा जाए सो कार्निवल भोआ जाए सो कांगड़ा में कोई भी मोटा धर्मशाला में कोई भी मोटा किया सो इवेंट भोआ शो तो इवन कि मैं थोड़ा गरीब बिजी शेड्यूल थू अदरवाइज आऊँ मिंजर होस्ट करना गया सो भी ज़रूर गन देखो जो कि इस रेडियो रे जरिए इतनी अच्छी प्रोफाइल किए सो मेरे बने कुछ हो रहे हैं कि धर्मशाला में तो छड़ा पूरे हिमाचल में किया सो हिमाचल तो बाहर भी किया सो हम परफॉर्म करने लायक अगर आज बनो हाँ तो सो सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो री वजह तो बनो हाँ सो तो इन्हें मन जो बहुत कुछ दिता और अगर बच्चे ही है गया सो अपना आशीर्वाद मुंजो पर रखो हाँ सो तुम सो मुंजो ले लफ्ज़ वाकई में ना बुंदा और इतने इन इस रेडियो में जो इतना कुछ दिता मतलब हम अपने ज़िंदगी रख मुंजो ले बो ना कि थोड़ा करी और बो आऊँ जिंदगी हर एक चीज़ की सो समर्पित करना चाहता हाँ अपने इस रेडियो वास्ते तो थैंक यू सो मच जी वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू और तो सब भी जो भी मुबारक हूँ जी कजो कि कल्चर के सो रेडियो तो भला इन द एक टूल हा माध्यम हा लेकिन इन द कल्चर जो प्रमोट करने पीछे किया सो इस रेडियो रे भी बहुत बड़ा किया सो हाथ हा बहुत बड़ा किया सो योगदान हा श्रोतो है ना तो तुसु सब भी जो भी इन द जितने भी श्रोतो तीनों भी बहुत बहुत मुबारक हूँ आज 2017 में किया सो रन भुआ थो 8 अगस्त 2017 में श्रोतो रेडियो रन भुआ थो और बिल्कुल दसना चाहता जो इन डायरेक्टर हैं संदीप परमार सर तिन्हें 2004 में ये सपना हेरू तो कि मेरे धर्मशाला मंच भी आकर रेडियो किया सो भूना चिंदा अगर कम्युनिटी रेडियो भूना चिंदा जो कम्युनिटी वास्ते काम करे जो कम्युनिटी री आवाज़ बनी करी किया सो मणु मंच गच्छा वो आज सो आवाज़ बनी करी किया सो मणु मंच पुजू कर दे आशो तो आवाज़ ही ना ना केवल हर एक जानकारी हर एक जो भी इन द कलाकार बंदे तिन्हें वह है प्लेटफॉर्म दिंदे हैं जो भी इन द उभरते सितारे बंदे तिन्हें है अपने वीडियो मंच किया सो ज़रूर हंदे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया सो इन द डायरेक्टर संदीप परमार सर है किया सो वास्ते तैयार कर रहा तो तैयार अभी तहे दिल था हूँ शुक्रिया अदा करनो धन्यवाद करनो इस लाइव कार्यक्रम रे माध्यम था तैयारी वजह था हूँ किया लाइव कार्यक्रम बंदेन सब चीज़ अगेन सो सब सिर्फ तैयारी बजाओ बुंदे तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू बहुत बहुत धन्यवाद है जी आइए तो कार्यक्रम का आगाज़ कर देना और आगाज़ तो बाद कुछ एक खास जानकारी जी रोज़ाना तुम होगी साझा करते हैं तीन करते हैं शो तो बने रही है तो सब आर जे सचिन कपूर सो गए गूंज अपने पन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे इन दे श्रोता सोगी बन रहे तैयारी बिल्कुल श्रोतों आज तक सो गीत किया सो होना चिंता सो है ना अरुण भट्ट गीत किया सो गौरा हा श्रोतों जड़ तक मुंजो याद हा हम जरूर तस गीता जो किया सो हिरदन का जो कि आगाज किया मुंजो लगता कि तस गीता होगी बुना चिंता बिल्कुल वेडुओ वेडुओ

इस गीतों के किया सो आगाज बुने चिंता शतों बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गे और ए वेडियो तो रिलेटेड गीत था इस गीतों के किया सो आगाज बुने चिंता बने रहे जुड़े रहे जी और मुबारक मुके सभी जो

0: स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए जिंदा श्रोतागण अस हो गए कनेक्ट हूं अगेन। सो शुरू पूछे गए पुछ दिन कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते।
0: हेलो।
1: हेलो
0: जी नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर जी।
0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक।
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी।
0: बड़ी दूरों आवाज सुन दिया।
1: बड़ी बड़ी मुबारक हो सर जी।
0: हाँ जी तुसु भी बड़ी मुबारक हो जी।
1: धन्यवाद सर जी।
0: तो है बिंद है रेगुलर श्रोता हिन रेगुलर लिसनर हिन रेडियो रे।
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम तो कर दे सर जी। दिन रात मेहनत कर दे सर जी।
0: सर जी तुम्हारी ना तुम दिन आवाज ना इच्छू कर दे।
1: हुन होई थी सर जी आवाज।
0: हाँ जी थोड़ी थोड़ी इच्छू दी जी।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी जी क्या बोल रही थी है।
1: मैं बोला सर जी दिन रात मेहनत कर दी तो हम कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद सारे स्टाफ फिर सर जी।
0: चलिए जी धन्यवाद सो मच। धन्यवाद तुंदा सभी का प्यार है जी। तुंदा सभी का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद जो हमेशा आंसू पर बनाए रखें अपने प्यार जो है बनाए रखें जी जनाब
1: जी सर जी। हाँ जी सर जी।
0: अच्छा जी कौन दिन गीत होना
1: सर जी गाना सुनाई ने मुझे सुनील राणा जी की आवाज है सुती अब मैं दो दरी।
0: अच्छा मंदरो कुंदे है जी।
1: सुती अब मंदोदरी।
0: अच्छा सुपना वाला होया
1: हाँ जी सर जी।
0: लंका पर। ठीक है जनाब।
1: धन्यवाद सर जी।
0: धन्यवाद जी। धन्यवाद बहुत बहुत मुबारक
1: सर जी।
0: तुसु भी।
1: थैंक यू। नमस्ते सर
0: जी श्रोतो इन अगले श्रोतागण सूगी कनेक्टेड हिन पुछ दिन कौन बलून दिन और कड़ी थो बलू कर दे हिन। नमस्ते जी।
2: नमस्कार महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते। नमस्ते ठीक ठाक ना।
2: या मेरा उस मालिक दी।
0: अच्छा और कर लुगरेन जी।
2: बस करा लगना प्रोग्राम में हूं कर दिया है।
0: अच्छा
2: बड़ी खुशी दी गल आज 9 साल बीत गए ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: बंदे ने बच्चा जन्म लंदा ना
0: जी जी
2: दस दिन में खुशी होंगी है।
0: दस दिन में खुशी होंगी
2: आज 9 साल बीत गया है बड़ी खुशी है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: इन्या खुशी करते करते उम्र बीती गानी है इन्या चली रहना दस चली जाना
0: चली रहना क्या गल बोले।
2: बड़ी बड़ी मुबारक हो महाराज जी।
0: महाराज तुसु भी बहुत बहुत मुबारक बुन बड़ी बड़ी मुबारक बुन तुसु भी।
2: महाराज
0: और बड़ी अच्छी गल बोले तो है कि भाई जने जन्म लेंदे तेने खुशी बनते और तत्थों बाद चली गए पर चीज अगेन सो स्थिर रहती नहीं है चली रहती है ना।
2: जी जी महाराज।
0: सही गल बोले दिल लगी है तुम्हारी गल। और कर
2: मतलब एक रेडियो ये जड़ा है
0: जी
2: ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है
0: जी
2: क्योंकि अगर मोबाइल होता ना ये बैटरी जड़ा घट मुकी जाती जल्दी
0: जी जी जी।
2: अच्छा रेडियो भी ऐसी होंगे कि मैं ही अगर रेडियो रखता तो मैं ही मोबाइल आई बैटरी पा दिया।
0: अच्छा
2: तो मैं चल मतलब लाइंदा 3-4 दिन कटी जाता।
0: अच्छा
2: लगातार होंगे फिर समझा सोई लगाई ना।
0: अच्छा
2: तो जाएगा फिर 4 बजे फिर मैं चुकी लेना।
0: अच्छा
2: जे गल नोई नोई तुस होनी अच्छी बड़ी खुशी होंगी है
0: जी जी जी
2: क्योंकि साढ़े 7 साल तो मुझे उचिया होंगे।
0: क्या बात है।
2: तो इन अगले इन तुम्हें भी होना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ये चल रही है ना दुनियादारी।
2: इन्हें जल्दी आक मुझे ना राजस्थान में सूरह फोन है।
0: अच्छा
2: बोलो जो गुंजन रेडियो बोले कि चल जा बोलो अस पता ना लगू करता।
0: अच्छा
2: नहीं बोलो मेरे 110 दे होंगे ना मतलब कि रेडियो चलाना तो कि जो पढ़ता ना फिर मिलो अच्छा लगू करना रल दूता तू सुना दे मिलो आम तू नी तरीक जो तूने बजे हनाला मिलो।
0: अच्छा
2: बोलो कोई गल ना क्योंकि टठ बिंदे अपने मते आदमी।
0: अच्छा क्या बात है। राजस्थान में भी अपने अपना गद्दी भाईचारा है ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: क्या बात है क्या बात है।
2: चलिए
0: चलिए ठीक है जी जनाब, कुंदन गीत होना पसंद कर ले।
2: आज जनाब गीत के आज भजनी समझ लिया
0: जी
2: कि
0: जी जी
2: कर ले गुरा नाल प्यार ना कर अड़िया, मन ले गुरा दा कहना ना कर अड़िया।
0: अच्छा, कर ले गुरा नाल प्यार
2: जी महाराज ना कर अड़िया।
0: अच्छा क्या बात है, चलिए ठीक है जी, जरूर तू सुई गीत होना ले है।
2: ठीक है महाराज जी, धन्यवाद
0: ठीक है महाराज, धन्यवाद, थैंक यू
2: जी।
0: जी। तो श्रोतो इन श्रोतागण जो कि असो सभी बहुत खुशी हा कि अज यह कि असो बर्थडे सेलिब्रेशन बच्चों करदा रेडियो रा, और जरूर श्रोतो लाइट पता नहीं मेरे टाइम में वो लाइट को चली गच्छू करते मन जो अपू ना समझ लगो करदा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले हो कि गल करना पैने कि भाई साहब चूर तो पाँचे मत करो करे तो है। फिलहाल तुसु तकर जानकारी के अनुसार पहुँचनते हैं श्रोतो, इंदे और भी श्रोता के अनुसो कॉल करो कर दिन, लेकिन ज़रूर कनेक्ट कर लें। आवारा पशु पर हादसे में पीड़ित परिवार जो के असो 15 लाख मुआवजा देने रे आदेश भुए हैं श्रोतो, सुप्रीम कोर्ट के असो सड़क और सार्वजनिक स्थान पर आवारा पशु रे कारण होने वाले हादसे पर के असो महत्वपूर्ण फैसला देता है श्रोतो, पीड़ित परिवार जो के असो 15 लाख रुपये मुआवजा देने रा आदेश के असो देता है कोर्ट, आज आवारा पशु रे कारण के असो होने वाले हादसे पर चिंता जतंद चिंता जताए हर्ष होता हूँ, और केंद्र और राज्य सरकार जो ऐसी दुर्घटनाओं रे पीड़ित परिवार जो मुआवजा देने वास्ते किया सो बल्लो हर्ष होता हूँ, आवारा पशु थो संबंधित कानून रे बेहतर मतलब अदालत है कि सो सरकार में सरकार थो ऐसी घटना भी रोकथाम और मुआवजे भी व्यवस्था वास्ते ठोस नीति बनाने जो कि असो बल्लो हर्ष हो तो, और तू सब भी दसना चाहता हा दुर्गामी प्रभाव वाले फैसला जस्टिस संजय कोरला और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह है किया सिंगरी पीठ है किया सो पंजाब रे अक मामले में श्रोता हूँ हूँ हाँ श्रोता हूँ जी बिल्कुल इसी सोगे लाइट भी चले आए जा सारा हूँ बालू कर दो लगता एच आई पी एच माफ़ करा बिजली विभाग वाले मेरी गल की सो तुरंत ही हूँ लिया है ना हूँ देन, वैसे बहुत सारे कार्यक्रम इस कार्यक्रम जो खासकर हूँ देन इंदे जितने भी गद्दी भाईचारा जैसे सो एस डी ओ रैंकरे भून जाए जो मर्जी भून, तो थैंक यू सो मच जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली विभाग डिपार्टमेंट विभाग बिजली विभाग रहा हूँ धन्यवाद करनो कि तो लाइट में जितया कजो कि असू बहुत ज़रूरी थी इस समय लाइट श्रोता हूँ, इन बहुत सारे श्रोता के अनुसो कॉल करो कर देना सु और एरा बन देना कि अब चलिए है बिल्कुल लाइव फेसबुक रे माध्यम तो भी बच गए हैं, तो सब ये ट्यून कर रहे इस समय एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और इन द अगले श्रोता होगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी। पहाड़ों की हवा में जो सुर गुल जाता है, हर घर की बात जो रेडियो बन जाता है, 9 साल से चल रहा ये स्नेह का सफर, 9 साल से चल रहा ये स्नेह का सफर, गुंजन एफएम धर्मशाला की धड़कन हर किसी का घर।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब हम रिप्लाई तो बड़ा अच्छा कर सकनो हाँ, लेकिन मतलब बहुत बढ़िया बल्लो तो है, जो शायरी तो है बल्लो है ना, इतनी तो इन दौस लेकिन सोबजाई बुझ गए और बहुत मज़ा आ ची, अपना प्यारा दे शुभ ना भी दसी दे ची और अपनी प्यारी दे जगह भी दसी दे जड़ी थे तो है बल्लो कर देन अच्छा इंदु सिद्ध बाड़ी दे। ठीक है इंदु जी, तो है भी इन देखें सो बड़े रेगुलर श्रोता हिन और तुंदा भी आऊँ धन्यवाद करनो कि तो है अपने रेडियो सो के ऐसो पिछले कितने सालों से तो है इंदु जी हुनो कर देन रेडियो जो
3: मैं लगता है शायद 5 साल क्योंकि उससे पहले मेरा रेडियो थे खराब हो गया, फिर मैं नया रेडियो मंगवाए
0: जी,
3: फिर वो भी खराब हो गया, कभी मैं फिर ऑनलाइन रेडियो मंगवाया।
0: अच्छा
3: जी, तो मैं रेगुलर ऐसे तो मैं बचपन से सुन दी ना।
0: हाँ जी,
3: पर बीच से छोटी ही था, 5 के साल से रेगुलर रही है।
0: अच्छा, तब पिछले 50 साल तो है इंदे रेगुलर शो तक सो रेडियो गुंजन रे बन रहे हैं। और बड़ी अच्छी शायरी तो है कि सो बल्ले आ, यानी कि ये शायरी तो है कहने लिखी थी कहने लिखी थी इंदु जी ये शायरी तो है
3: बस प्रोग्राम सुनती रहती थी दिमाग जाइ कुछ थोड़ा थोड़ा लिखी दी रही बीच।
0: अच्छा क्या बात है, बहुत अच्छा लिखो, बहुत अच्छा लिखो। और थैंक यू सो मच जी तुंदा इस प्यार वास्ते इस स्नेह वास्ते। इंदु जी कार्यक्रम में कौन दिन गीत थोड़ा पसंद कर ले
3: सुनाए जा कोई भी अपनी पसंद आ तो
0: हम ना जी
3: मैं तो थोड़ा मेरा बीच करनी थी।
0: हां जी
3: मेरे जी बढ़िया बढ़िया मुबारक जी।
0: थैंक यू सो मच जी। तो है जरूर फरमाइश दस्ता जी, पहाड़ी फरमाइश या गद्याली फरमाइश जो तुसु ठीक लगता जी।
3: कोई नहीं शिव जी सुना दे कोई भजन तो है ना।
0: अच्छा ठीक है इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद और जरूर सुन ले तुसु भजन महाराज जी।
3: धन्यवाद जी।
0: ठीक है जी, थैंक यू। तंदे बहुत सारे श्रोतन श्रोताओं जो रेगुलर इंदे श्रोता हैं जिन्हें आज पता लगो कि 9 साल पूरे बुझ गए, यानी कि 1 अगस्त 2017 में किया सो ओपनिंग हुई थी श्रोताओं। और आज जितने भी इंदे श्रोता असो की बन रहे हैं सो बिल्कुल तुरंत मुबारक दिच्छू करते हैं और तुरंत जेड़ा बहुत खुशी बनते ना श्रोता जो भी अभी इंदु जी थी जो कि सिद्ध बाड़ी था इन्हें भी की एक शायरी लिखी करेगी सो रखी थी ता जी इंदे श्रोता अस उगे कनेक्ट बनते है अपने आप ही मतलब इंदे दिमाग का कुछ भी चल रहा है अपने आप ही की सो चार्ज बुझी गंदे एनर्जेटिक बुझी गंदे अंग्रेजी का शब्द है एनर्जेटिक यानी कि अपने आप ही की सो है थोड़ा तगड़े पुछी गंदे बहरहाल इंदे अगले श्रोता भी किन स्वसु के बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं इंदी पंजवीं कॉल है पंजवीं छवीं कॉल है शायद। फिलहाल लेकर चलते तू सब भी जो अगले श्रोता हो की रूबरू कर बनते। नमस्ते जी।
4: नमस्कार हसन भाई जी, क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है वाला तुंदा क्या हाल चाल है?
4: बस बढ़िया सर, तुसी बड़ी बड़ी बधाई बोना जी।
0: जी तुसु भी बड़ी बड़ी बधाई बुन जी। तो इंदे श्रोतागण इन रेगुलर श्रोता इंदे

0: जी सर, आया सर रेडियो गुंजन 2021 अंदर है, पहली बार होना तो अपनी बात भेज दिया करें सर, दीवाने पर चाहिए।
1: जी
0: और तो है भी प्रोग्राम अंदर इतना बढ़िया 21 तो नहीं करी 26 तेकर सुधार करो कि मतलब जड़ा था गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग प्रोग्राम आज तो बहुत लोग पसंद कर दे।
1: जी
0: गद्दा का कल्चर इन प्रोग्राम सब पसंद करते ना, पर इंया तो अलावा जियां कस की जो अदर स्टेट के लोग इंया ऐप डाउनलोड कर देते तो 180 हर बड़ी बात है यार, बड़ा अच्छा प्रोग्राम दा जो टाइम।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: जी
1: चलिए, बहुत शुक्रिया जी। और जने जने तो है सुई मोटिवेट करते रहते हैं। मैं बोलूँ तो आप जो अंग्रेजी का शब्द क्या है, एनर्जेटिक बुझेगन इन बड़े बहुत जोश
0: आया
1: चली
0: सर
1: इंदा
0: ना
1: सुंदर।
0: रेडियो सो भी बचपन तो जुड़ हुआ है, मतलब इनका जना जन्म बहुत है रेडियो चलने मुंडा तो,
1: जी
0: और तहने ऐसी रेडियो ना नॉलेज हम तक रेडियो चलता क्या रेडियो काम क्या करता
1: जी
0: आए अक्सर सल्ला खुले के अंदर दिए के अंदर क्या चीज बोले। हाँ आज का रेडियो खैर ऑनलाइन बचेगो, रेडियो जो है बिच भरे 13 बाद 18 19 तक बिल्कुल गायब बचेगो, लेकिन जो है ऑनलाइन रेडियो में चालू बचेगो तो फिर ही रेडियो ने रफ्तार पकड़े जा
1: बिल्कुल बिल्कुल, फिर
0: और
1: काफी
0: लोग
1: ज्यादा
0: अपने
1: रखता है।
0: सोशल मीडिया तो बचने ताई या मतलब गलत कनेक्ट करने तो बेहतर आ कि अखियां अपनी हक करिए बचाने बेहतर आ कि रेडियो हमने पसंद करना लगे थोड़ा टाइम है रेडियो से फिर ना लगे ना।
1: जी, एकदम रफ्तार पकड़े रेडियो, ठीक बोलो।
0: हाँ
1: तो
0: जी अब तो जी ऑनलाइन वेबसाइट रेडियो बिकते हैं, पहले कुछ ऐसे रेडियो थे सो बिकते नहीं पे थोड़ी सो आउट ऑफ स्टॉक चलते हैं।
1: जी
0: हाँ जी अते तुम्हारा जो ऐप ऑनलाइन शायद कैसा रेडियो ऑनलाइन है जो ऐप के थ्रू खड़े हो सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जिस मौके अपने गल करो तो त्रिपुरा अंदर पोस्टेड आ रहा हूँ तुम्हारा प्रोग्राम मतलब होंगे रहता टाइम टू टाइम।
1: क्या बात है, त्रिपुरा अंदर मौसम कदे इस समय।
0: सर ये तो मतलब एक्चुअली अंदर 7 महीने बरखा होंगी, 2 मतलब 3 महीने मौसम खुलता,
1: अच्छा
0: बाकी 7 महीने जी क्लाइमेट ऐसा कि बिल्कुल हिली एरिया नेड़े जी है तो मतलब हल्की की बूंदा बांदे लगे रहती है।
1: लगे रहते हैं, ज्यादा नुकसान तो नहीं बूंदा बरखा तो इस किनारी
0: नहीं नहीं सर एड़ी यार
1: लैंड।
0: जी सड़क तारा या रेलवे का ट्रैक आया जो भी चीजें बन रही तो सब बता बन रही मौसम हेरी करे।
1: अच्छा,
0: जी इतना ज्यादा नुकसान तो ना बूंदा कि सब चीजें बनाया कहता कि मतलब जो मौसम कि मौसम 7 महीने बरखा होंगी हल्की हल्की बरखा बड़ी तेज बरखा ना होंगे
1: अच्छा
0: हाँ क्योंकि बूंदा बांदी बरखा होनी है पर तो लगे रहने किसी वक्त तक से बंद हो जाएगा इस तरीके बरखा होती है इलाके अंदर है।
1: नहीं तो बरखा लगी रहते हैं,
0: हाँ जी तो बरखा लगी रहते हैं
1: त्रिपुरा रे। अच्छा, क्या बात है, कदे न इडिया रे लोकल, कदे न मनु कदे न त्रिपुरा रे।
0: तो लड़ी यार अच्छा ना तेरे अपने बंगला भाषा बल्दे लिए लोग हिंदी बड़ी घट पकड़ देना।
1: अच्छा,
0: और अस ऐसा रेडियो चलते जी लोकल ही प्रोग्राम चलते था ज्यादातर अस जो फ्री होंगे तो मोबाइल जाना सी ड्यूटी वापस मुझे तो सुता रेडियो गुंजने होंगे ना।
1: अच्छा
0: जी,
1: चलिए जी,
0: वाकई से रेडियो फिर हम फिलहाल टाइम पास करना पर रेडियो जी लोकल लैंग्वेज समझ लेंगे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि एफएम चलता और एफएम में तो जो लोकल ही ट्रांसमीटर काम कर देना
1: ट्रांसमीटर। बिल्कुल बिल्कुल,
0: बाकी अच्छ बड़ी खुशी है कि 9 साल तो गुंजन रेडियो तरक्की करो बंदा तो अच्छी गलत है कि मतलब चलो वरदा और चंदा कि हम और ही चलता रहे।
1: चलिए, थैंक यू सो मच जी। डे बाय डे की है सो इम्प्रूवमेंट अगर हुआ और इन श्रोता असू बूस्ट करन और इस प्रकार होगी इनकी मतलब इतनी बारीकी होगी कि सो असू हूँ दे बून और फिर तत्थों बाद अक शाबाश है कि सो मुड़ा तो अच्छा लगता जी काम करते।
0: हाँ सर एड़ी भी ना जेड़ा इंदे अदर स्टेट दे लोग ने तियां व्यास है मतलब रेडियो अंदर आऊं ऐप डाउनलोड करके दिन अंदर रेडियो गुंजन और तियां बलदा कि तै प्रोग्राम होना क्योंकि ना जेड़ा नाइट प्रोग्राम चलदा ना जियां 11 बजे बाद शायद ऑफलाइन है तो
1: जी
0: सो यहां चलदा बग्गा 4 बजे तक 5 तक तो अक्सर है कई बार ऐसे फोन ड्यूटी इंदे या निंदर लगा था तड़ी रेडियो सुनना ते बड़ी बड़ी गाने चलदे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, हिंदी गाने मैक्सिमम हिंदी भाषी लोग ता सो ज्यादा हुंदे बड़े बड़े बलदे यार बड़े अच्छे ऐप बलदे।
1: जी जी जी जी चलिए जी, सभी जो मेरी तरफ तो जय हिंद है और 15 अगस्त भी इन्हें आला 14 दिन बाद तो तुम्हारी सेवाएं असु वास्ते बहुत मूल्यवान हैं और मतलब तुसु वास्ते वाकई में शब्द नहीं होंगे अगर तू तो इन ताया है इस कमों भी कि असु करी सकूँ देन है ना जी।
0: अगर
1: आर्मी ना भोआ फोर्सेस ना भूनता है कोई भी काम किए सो इतना आरामदायक थोड़ी ना करी सकते था तुसु भी बहुत बहुत मुबारक कि तो है वेडी गुंजन सो की जुड़ रहे हैं ना और अपना प्यार अपना आशीर्वाद किया सो जरूर असु पर ही रखने जनाब।
0: जी
1: ठीक है जी, कुंदन गीत सुनना पसंद कर ले जी।
0: जी आज गाना है जो सज्जन मनु घर आएगा उसकी नवा गायिका गौरा
1: जी जी जी
0: उसका नाम है सुंदर
1: बिल्कुल हम समझे को जी
0: जी जी ओके थैंक यू सर
1: ठीक है जी थैंक यू सो मच जुड़े रहे बने रहे रेडियो गुंजन धर्मशाला सो की
0: ओके जी ओके
1: चलिए श्रोतो फिलहाल है लेकिन चल दिन कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो और फरमाइश रहा दौर के सो भी पूरा करी दिन दे हिन तुम दे सब भी रे रेडियो सेट मा

शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सभी को लाइव चल रही तुंदे सभी रे रेडियो सेट पर वेरी गुंजन धर्मशाला मंच बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन आग मौके फिर सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा क्या हाल चाल है श्रोता तुंदे उम्मीद भी आ खरे भुने तो सब ता चलिए जी कार्यक्रम जो है आगू बढ़ते हैं श्रोतों और कार्यक्रम मंच अने जानकारी के अनुसार तो सो गया सो जरूर शेयर करनी हिन साझा करनी हिन लेकर ही चल दे तू सभी जो इंदे श्रोता भी ऐसा होगी कनेक्ट हो चुके दें श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं तो है 7088879 पर नंबर एक मौके फिर 7088879 पर आइए कार्यक्रम में श्रोता बिल्कुल इंदे जो श्रोतागण हिन सो जुड़ रहे भी हिन अब होगे फेवरेट डिस्कनेक्ट हो चुके चलिए शिवजी भगवान जी रे गीत के सो बल्लो तो होने जो था जरूर ये गीत के सो हूँ लेंदे इन शो तो है ना जी मणि महेश चल चलिए उन दिन प्यार दे भजन तुम्हें सभी रे रेडियो सेट पा

शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम सचिन कपूर सो गेंदी अपने गप्पा बिल्कुल लाइव होने कर देने अपने वेडियो सेट में ता श्रोतों आइया कार्यक्रम जो थोड़ा करी आगो और बढ़न देन और किसाना जो कि है श्रोतों अब ऐसो 5 साल और मिलना अच्छी 1000 रुपया जी बिल्कुल केंद्रीय कैबिनेट में आगे ऐसो बढ़ाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना खर्चा बुना है 3.15 लाख करोड़ रुपये श्रोतों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में के श्रोतों सो आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में माफ करा कार्यक्रम में ना आयोजित केंद्रीय कैबिनेट भी बैठक में किया सो कुल 4.50 लाख करोड़ रुपये में 5 बड़े प्रोजेक्ट जो किया सो अपनी मंजूरी आदित्य है श्रोतों यदि मैं किसान थो लेकर ही किसान जो भी मोलने सभी मोटी गलता किसान जो भी किया सो अगले 5 साल तक 6000 रुपये किया सो जरूर मोलना है श्रोतों तो यह सो सभी वास्ते किया मतलब बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन गल है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिच्छू करते हैं सो तो फ्लैश फ्लैट तो अब है कि आसो करखनगर का बहुत नुकसान के आसो बच्चू करता है सो तो जगह जगह के आसो काफ़ी ज़्यादा नुकसान बच्चू करता है जो कि बरसाले लग रो और बरसाले तो सब भी पता कि यह किस प्रकार हो गए कि आसो सरवाइव करते हैं ना तो अग मौके फिर गुजारिश है कि भाई बुच सकता नदी नाले किनारी नागन पेड़ा पूड़ा पर रुखा रुखा पर के सो ज़्यादा ना चलन और जड़ी फिसलन है तस किनारी नागन भट्टी भुट्टी किनारी की सो बिल्कुल नागन है ना कजो कि बरसाला लगरो और बरसाला तू पता 2 पहिया वाहन बहुत जाए 4 पहिया वाहन बहुत शोतो जितना धीमी गति होगी कि सो चला सकते सो जरूर चलान और इसी सो के शोतो ख्याल किया सो जरूर रखना अपना भी और परिवार आरा भी बहुत ज़रूरी है सो तुम बहरहाल चल दिन कार्यक्रम में थोड़े करे आगू बढ़ दिन और अगली फरमाइश कर दिन पूरी बने रही आरजे सचिन कपूर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ और कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा गैन सो चल रही श्रोताओं तुम सभी रे रेडियो उस सेट पर बिल्कुल लाइव रेडी गुंजन धर्मशाला मंच ता चलिए जी कार्यक्रम मंच अब श्रोताओं अगली जानकारी तो होगी शेयर कर देने ऐसे अब तक ही ऐसा बनना शुरू होने हिम बस प्लस कार्ड श्रोताओं ग्रीन येलो और सम्मान कार्ड जो हिम बस प्लस कार्ड में करवा शोतो मर्ज 15% तक किया सो छूटा पथ परिवहन निगम रे बस अड्डे और डीपू रे इसी सप्ताह रे हिम बस प्लस कार्ड बनाना की सो शुरू हो चुके हैं निगम री और तो उठे जो इति जो लेकर की सो तैयारी शुरू हो चुकी है शोतो ऑनलाइन भी किया सुमनु कार्ड बनाने रे कार्ड बनाने वास्ते की सो आवेदन करो करते हैं श्रोतो निगम री यात्रा भी सुविधा रे वास्ते अलग अलग श्रेणी में किया सो संचालित ग्रीन कार्ड येलो कार्ड और सम्मान कार्ड किया सो एकत्रित कर हिम बस प्लस कार्ड शुरू करने रा निर्णय किया सो लियो हाशतो ये नया कार्ड मात्र 365 रुपये वे वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध होना है इन कार्ड में 15% तक रियायत के असो मिलने हाँ श्रोतों और कार्ड बनाने वास्ते की असो निगम री औरतों भी एक महीने व समय किया सो मुल दिया गाना हाँ श्रोतों यानी कि मिलना हाँ श्रोतों निगम रे इस कदम रा उद्देश्य यात्री जो अक ही कार्ड रे माध्यम थो रियायती यात्रा री सुविधा उपलब्ध कराना और अलग अलग कार्डा भी व्यवस्था जो समाप्त करना है जिनके येलो कार्ड ग्रीन कार्ड दुआ सम्मान कार्ड है ना तो सीधा बैगे करो कि हिम बस प्लस कार्ड किया सीधा के बने गोए डोल झंझट ही किया श्रोतों से मकाई दिता तो चलिए जी कार्यक्रम सचिन कपूर सो की हूँ कर दिन फिलहाल तो अब इजाजत लेने रा समय की सो बुचेगो तू सो सब भी तो श्रोतों और गंदे गंदे तू सब भी जो है बोलना चाहूँ आऊँ कि तो है ज़रूर हंस दे रहे करा मुस्कुरन दे रहे करा और वीडियो गुंजन जो कि सोए हूँ दे रहे करा खो जो कि तुम्हारा अपना रेडियो है श्रोतों तुम्हारा अपना खास रेडियो हा बहुत सारे श्रोता गिन सो इस रेडियो रे माध्यम तो जुड़ते हैं और सब भी जो अच्छा भी लगता है श्रोता है ना तो ये जुड़ते रहो करे ये मुस्कुरंदे रहो करा और कई साल सालों साल की सो ये निकलते रहन हंसते मुस्कुरंदे बस ये जिंदगी में बलदे ना दुख बीमारी ना लगा इंसान जो था इंसान अपने जीवन के सो अच्छे तरीक़ों की व्यतीत कर लेंदा हा बहरहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेनो तो सुथों इजाजत नमस्ते धर्मशाला मुलदन चाहिए अच्छे।

नमस्कार, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। उद्योगों को बड़ी राहत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देगा वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र। सड़क की सुरक्षा जाँच के बिना नहीं चल सकेंगे वाहन। किसानों को अगले 5 वर्ष भी मिलती रहेगी पीएम सम्मान निधि। आवारा पशुओं से हादसे में पीड़ित परिवार को 15 लाख मुआवजा देने का आदेश। समुद्र मंथन करेगा भारत, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए 84,000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलने वाली सहमति प्रमाण पत्र की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के पंजीकृत उद्योगों को वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता उद्योग की श्रेणी के अनुसार 5 से 25 वर्ष तक रहेगी। इस व्यवस्था को लागू करने वाला हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बन गया है। साथ ही तय समय में प्रमाण पत्र जारी न होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के करीब 12,500 पंजीकृत उद्योगों को अब बार बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC या सहमति प्रमाण पत्र लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का उद्देश्य स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित सड़क अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ऑडिट नीति 2026 लागू कर दी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब विभाग के अधिकार क्षेत्र में बनने वाली सभी प्रमुख सड़कों और परियोजनाओं का विभिन्न चरणों में अनिवार्य रोड सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। बिना सुरक्षा जांच के सड़क पर वाहन नहीं चल सकेंगे। सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से इसे लागू किया है। नई नीति के तहत सड़क परियोजनाओं का सुरक्षा ऑडिट योजना DPR निर्माण सड़क खोलने से पहले तथा मौजूदा सड़कों सहित 5 चरणों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति दी है। पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को पहले की तरह ही हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिलती रहेगी। इससे किसानों की खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, जोखिम कम होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने और आवारा पशुओं से संबंधित कानूनों को बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से ऐसी घटनाओं की रोकथाम और मुआवजे की व्यवस्था के लिए ठोस नीति बनाने को कहा है। दूरगामी प्रभाव वाला ये फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पंजाब के एक मामले में सुनाया। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण तेल गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के विशाल समुद्री क्षेत्र में तेल की तलाश करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी। इस योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत जलाशयों नहरों पर तैरती हुई सोलर परियोजनाओं का विकास होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम है। पथ परिवहन निगम के बस अड्डों और डिपो में इसी सप्ताह के हिम बस प्लस कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। निगम की ओर से इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन भी लोग कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग श्रेणियों में संचालित ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और सम्मान कार्ड को एकीकृत कर हिम बस प्लस कार्ड शुरू करने का निर्णय लिया है। ये नया कार्ड मात्र 365 रुपए के वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध रहेगा। इन कार्डों में 5 से लेकर 15% की रियायत की जाएगी। कार्ड बनाने के लिए निगम की ओर से 1 महीने का समय दिया जाएगा। स्तोबरी में आज शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बतल्ला एवं कछलोट पंचायत से संबंधित विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बदल्ला एवं तोतारानी में भूस्खलन, गतरी सड़क पर विद्युत तारों और पेड़ों से जुड़ी समस्याएं,
डलगद्दी वस्ते संपर्क मार्ग, तोतारानी में एम्बुलेंस सड़क निर्माण, पंचायत घर निर्माण, चांदमारी में भूस्खलन से हुए नुकसान, बरनेट में शमशान घाट निर्माण तथा डेंजर जोन में आए घरों को सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। केवल सिंह पठानिया ने बताया कि दियाड़ा के वर्षों पुरानी सड़क की मांग को पूरा करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। विद्युत व्यवस्था में सुधार किया गया है। उनका कहना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो डल लेक में शीघ्र ही आरती शुरू की जाएगी। डल लेक का अपना धार्मिक एवं पर्यटन महत्व है और यहाँ वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित के कार्यों को सेवा भाव और प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए तथा बरसात के मौसम में लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नाचीज आरजे सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोताओं का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो कि हम अक्सर कहते हैं कि खुश रहना, तंदुरुस्त रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर सेहत आपकी ठीक है ना तो फिर सब कुछ सही है श्रोताओं। सेहत बेहतरीन होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। बहरहाल आज 9वीं वर्षगांठ है और 9वीं वर्षगांठ पर बधाई हमारी पूरी टीम को, आदरणीय हमारे श्रोताओं को, है ना जी, माननीय हमारे आरजेस को, जितने भी हमारे माननीय सम्माननीय आरजेस हैं उन सभी को, और हमारे बिल्कुल पसंदीदा वीडियो स्टेशन हम सभी का वीडियो गुंजन, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन हम सभी के लिए जो है वो बेहद ख़ास है श्रोताओं। हमारे इस सफ़र ने, सुरों के इस कारवां ने आज अपने शानदार 9 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं श्रोताओं। इस खूबसूरत मौके पर जो है वो रेडियो स्टेशन की पूरी टीम को मेरी तरफ़ से ढेरों शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई हो। और साथ ही साथ जितने भी हमारे हमारे श्रोता हैं, आदरणीय श्रोता हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 9 साल का ये सफ़र जो है वो पूरा किया है। और ये 9 साल कैसे गुजरे, कब गुजरे, वाकई में ही पता नहीं लगा। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमें इस कदर मिलता रहा कि हम दिन प्रतिदिन जो है वो खुद को और ज़्यादा बेहतरीन जो है वो करते रहे, और ज़्यादा बेहतरीन जो है वो बनाते रहे श्रोतों। तो चलिए जी, सबसे पहले तो मौसम की जानकारी आप तक हम पहुँचा दें। इस समय की बात करें तो हल्की धूप जो है वो धर्मशाला में देखने को मिल रही है और 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान है। श्रोताओं, नमी की बात की जाए, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, वो कम से कम 85% के जो है वो आसपास है श्रोताओं। तो ये तो है इस समय का धर्मशाला का मौसम। तो आइए जी, कार्यक्रम का आगाज़ कर लेते हैं और आप सभी को सुनाएंगे ये प्यारा सा गीत। आप सभी के वीडियो सेट पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वीडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। चलिए तो जानकारी को अभी टारा खोल देते हैं जनाब, क्योंकि जानकारियां जो है वो हमें अप टू डेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। श्रोताओं तो आप सभी सुन रहे हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज आप सभी की हमारे साथ है और ये हमेशा यूं ही बनी रहनी चाहिए। श्रोताओं आपका प्यार आपका आशीर्वाद हम सभी के लिए जो है वो बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। श्रोताओं तो आइए जानकारियों का पिटारा खोलते हैं श्रोताओं और अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। स्तोबरी में श्रोताओं आज शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केबल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में भतल्ला एवं कलजोट पंचायत से संबंधित विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए समीक्षा बैठक की गई। श्रोताओं बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने जो है वो भाग लिया। बैठक में भतल्ला एवं तोतरानी में भूस्खलन, कदड़ी सड़क पर विद्युत तारों और पेड़ों से जुड़ी समस्याओं, डल गद्दी बस्ती संपर्क मार्ग, तोतरानी में एम्बुलेंस सड़क निर्माण, पंचायत घर निर्माण, चांदमारी में भूस्खलन से हुए नुकसान, बनेट में शमशान घाट निर्माण तथा डेंजर जोन में आए घरों की सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वो विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो डल लेक में शीघ्र ही आरती शुरू की जाएगी। डल लेक का अपना धार्मिक एवं पर्यटन महत्व है और यहाँ वर्ष भर पर्यटक का जो है वो आना जाना बना रहेगा। श्रोताओं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनहित के कार्य को सेवा भाव और प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए तथा बरसात के मौसम में लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो ना बरती जाए। इस प्रकार के निर्देश जो है वो अधिकारियों को मिले हैं श्रोताओं बिल्कुल शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की ओर से। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। श्रोताओं बने रहेगा, जुड़े रहेगा आपके अपने वीडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने फन की और गूंज आप सभी जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ बने होते हैं, जुड़े होते हैं और अपना प्यार अपना आशीर्वाद जो है वो हर एक कार्यक्रम पे जिस तरह से रखते हैं आप, आपकी एक कॉल आपके एक मैसेज जो है वो हमें हमेशा से ही एनर्जेटिक जो है वो बनाते रहे हैं श्रोताओं और हमेशा से ही हमें बूस्ट जो है वो करते रहे हैं। ये 9 साल कब बीते पता ही नहीं चला, इन 9 सालों में जो है वो रेडियो ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और ख़ासकर मैं अपनी बात करूं तो मुझे यहाँ से लेकर उस मंच तक पहुंचाया है जी बिल्कुल, जो बड़े बड़े मंच, चाहे वो हम कांगड़ा कार्निवल की बात कर लें, चाहे हम होली फेस्टिवल की बात कर लें, बहुत बड़े बड़े मंच जो है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो की बदौलत जो है वो आज मैं कर पा रहा हूँ श्रोताओं बिल्कुल। और मिंजर चला हुआ है तो मिंजर में भी जो है वो हम थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, अगले साल जो है वो मिंजर भी हम ज़रूर होस्ट करेंगे। आप सभी का प्यार आशीर्वाद जो है वो इस नाची सचिन कपूर पर यूं ही बना रहे और बिल्कुल रेडियो तो हमारी जान है, थी और हमेशा रहेगी श्रोताओं, क्योंकि यहीं से शुरुआत है और यहीं से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी हैं। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहिएगा जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ इस समय लाइव कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। श्रोतो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। खोली गाँव में श्रोतो विवाहित की ज़िंदगी में जो मोड़ आ रहे हैं इस समय, ये वाकई में थोड़े से दर्दनाक हैं। न जाने क्यों इस तरह की परिस्थितियां बन जा रही हैं, इस तरह का माहौल बन जा रहा है, इस तरह का एनवायरनमेंट बन जा रहा है कि मौत को गले लगाना पड़ रहा है। श्रोतों जी बिल्कुल मौत का मामला जो है वो सामने आया है खोली गांव में श्रोतों, और नया मोड़ सामने लेकर आया है। श्रोतों मायके पक्ष की शिकायत पर जो है वो पुलिस द्वारा पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद जो है वो खोली गाँव के सैकड़ों ग्रामीण कांगड़ा थाना पहुँचे। श्रोतों ग्रामीणों ने ससुराल पक्ष का समर्थन करते हुए पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग जो है वो की। श्रोतों ग्रामीण का कहना है कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए सभी लोग जो हैं वो बेगुनाह हैं और मामले की पूरी जांच के बाद जो है पूरी जांच के बाद ही किसी निष्पक्ष पर जो है वो पहुँचा जाना चाहिए। श्रोतों उन्होंने कहा कि परिवार के लगभग सभी सदस्यों के हिरासत में होने से जो बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई है उसकी 2 छोटी छोटी बेटियों का पालन पोषण और भविष्य को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा हो गई है। श्रोतों ग्रामीणों ने पुलिस से जो है वो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस दौरान थाना प्रभारी संजीव कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया है कि पुलिस की पूरी कार्रवाई कानूनी और निर्धारित नियमों के अनुसार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले के प्रत्येक पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है तथा किसी भी निर्दोषी व्यक्ति के साथ अन्याय जो है जो दोषी नहीं है उसके साथ जो है वो अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, उसके साथ न्याय होगा। श्रोतों उन्होंने ग्रामीणों से पुलिस की जांच प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने की अपील की। खोली गांव के विवाहित की जो है वो परिस्थितियों में कुछ इस तरह की परिस्थितियों में मौत के बाद जो है वो मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने पति सास ससुर जेठ और जेठानी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा श्रोताओं, इसलिए कहते हैं कि प्यार जो है वो ज़रूर बना के रखिए श्रोताओं, आपसी भाईचारा भी ज़रूर बना के रखिए। देखिए किसी के पर्सनल घर के मामले में जो है वो पूरा गांव उठ कर आया है तो मतलब उनकी छवि पूरे गांव में उस प्रकार से होगी, है ना। तो अपनी छवि जो है वो बहुत बेहतरीन बना के रखिएगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर। श्रोतों पिछला गीत हम सभी ने सुना था छुरा के दिल मेरा गोरिया, चलिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी से लिया गया ये गीत था कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, ये प्यारा सा गीत हमने सुना। अब लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर, दिल का आलम।

शोतो एफएम बैंड 91.5 2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से श्रोताओं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आप सभी को जो है वो अगली जानकारी के साथ रूबरू करवाते हैं। संयुक्त निर्देशक अजय प्राशर रिटायर हुए। जी बिल्कुल श्रोताओं, धर्मशाला में DPRO कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों ने दी विदाई। श्रोतों पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक अजय प्राशर जो है वो पिछले कल करीबन 3 दशकों की सराहनीय सेवा के उपरांत संयुक्त निर्देशक के पद से जो है वो रिटायर हुए हैं। श्रोतों जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय धर्मशाला में उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन जो है वो किया गया। श्रोतों इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी और सुपुत्र भी उनके मौजूद थे। श्रोतों कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं मीडिया कर्मियों ने जो है वो उनके स्वास्थ्य एवं सुखद सेहत के लिए जो है जीवन की मंगल कामना की। श्रोतों अजय प्राशर ने जो है वो 1997 में सूचना अधिकारी के रूप में जो है वो विभाग में अपनी सेवाएं आरंभ की थी। अपने लगभग 29 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने लाहौल स्पीति, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, चंबा एवं ऊना जिला में लोक संपर्क अधिकारी के रूप में जो है वो अपनी सेवाएं दी। श्रोतों वर्ष 2013 में वह उपनिदेशक के पद पर जो है वो उन्होंने स्थान ग्रहण किया। इसके पश्चात वर्ष 2022 से 2025 तक उन्होंने भारत सरकार के नॉर्थ ईस्ट सचिवालय में बतौर निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क के महत्वपूर्ण दायित्व को जो है वो निभाया। श्रोतों इसके बाद वह हिमाचल प्रदेश के संयुक्त निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क के पद पर कार्यरत हुए। श्रोतों अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों और योजनाओं को जो है वो जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 दशक के इस लंबी जर्नी के दौरान अजय प्राशर का मीडिया के साथ भी गहरा रिश्ता जो है वो रहा। श्रोतों सबके साथ जो है वो अच्छी बॉन्डिंग रही। श्रोतों विभिन्न ज़िलों में कार्य किया उन्होंने और बिल्कुल श्रोतों अब वो जो है वो रिटायर हो चुके हैं और कांगड़ा ज़िला मुख्यालय स्थित मीडिया कर्मचारियों ने उन्हें जो है वो सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। जानकारियों का पिटारा श्रोतों यूँ ही चलता रहेगा। आप सभी समय बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। जी बिल्कुल श्रोताओं घर से निकलते लेते हैं इस गीत का आनंद रेडियो सेट पर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंचन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ। जानकारियों के साथ आप सभी को रूबरू करवाने की कोशिश ज़रूर है। साथ ही साथ श्रोताओं प्यारे प्यारे से गीत संगीत जो है वो भी चले हुए हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। धर्मशाला में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जो है वो सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषय को लेकर बैठक आयोजित की गई श्रोताओं। जी बिल्कुल, बैठक की अध्यक्षता आरटीए अध्यक्ष संदीप कुमार द्वारा की गई। बैठक में आरटीओ विकास जम्बाल सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे श्रोताओं। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की प्रशासनिक बैठक की उपरांत अध्यक्ष संदीप कुमार ने बैठक में चर्चा के विषय बने मुद्दों जिनमें यातायात की गंभीर समस्या, रूट परमिट और परिवहन व्यवस्था में सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी श्रोताओं। प्राधिकरण ने मुख्य सड़कों पर अनियंत्रित तरीके से जो है वह बसों के रुकने के कारण लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए भी विशेष रणनीति जो है वो तैयार की है श्रोताओं। राज्य सरकार के सहयोग से व्यस्त मार्ग पर खुले स्थानों को चिन्हित कर बसों व और बस स्टॉप बनाए जाएंगे श्रोताओं, है ना। हर 3 महीने में जो है वो अनिवार्य रूप से बैठक आयोजित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही श्रोताओं ट्रांसपोर्टरों को अपनी परिचालन संबंधी समस्याओं को सीधे प्राधिकरण के समक्ष रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि अनावश्यक अदालती मुकदमों और आरटीआई याचिकाओं से बचा जा सके और परिवहन यूनियनों के सुझाव को आगामी नीतियों में जो है वो शामिल किया जा सके श्रोताओं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है श्रोताओं वो यूं ही खुलता रहेगा, चलता रहेगा और आप सभी बने हुए इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। प्यारे प्यारे से गीत आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं और बिल्कुल आप इस पूरे कार्यक्रम को अगर सुनना चाहते हैं तो आप सभी फेसबुक के माध्यम से तो जुड़ते ही हैं, लेकिन अगर पूरे कार्यक्रम को, पूरे प्रोग्राम को आप सुनना चाहते हैं तो गुंजन इंडिया रेडियो आप ज़रूर लिखिए, प्ले स्टोर पर जाइए और गुंजन इंडिया रेडियो जो है वो ज़रूर लिखिए श्रोताओं, तो वहाँ पर आप पूरे कार्यक्रम को जो है वो बखूबी सुन सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम में अब वक्त है थोड़ा सा और आगे बढ़ने का, यानी कि एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं को सुनाने का। आप सभी यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और इस नाचीज सचिन कपूर के साथ।

प्यार किया है किया होगा आप सभी ने भी प्यार, है ना श्रोताओं। प्यार करना भी ज़रूरी है ना, और प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, प्यार कभी भी हो सकता है। बहरहाल आप सभी ने ट्यून किया इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ आप सभी के साथ। आइए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत प्यारा संगीत आप सभी ने सुना था।

वेणुगुंजन धर्मशाला में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। सड़क की सुरक्षा जांच के बिना नहीं चल सकेंगे अब वाहन शोधों। जी बिल्कुल, प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित सड़क अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ऑडिट नीति 2026 लागू कर दी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब विभाग के अधिकार क्षेत्र में बनने वाले सभी प्रमुख सड़कों और परियोजनाओं का विभिन्न चरणों में जो है वो अनिवार्य रोड सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। श्रोतों, बिना सुरक्षा जांच के सड़क पर वाहन नहीं चल सकेंगे। सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है। श्रोतों जी बिल्कुल, श्रोतों नई नीति के तहत सड़क परियोजनाओं का सुरक्षा ऑडिट योजना DPR निर्माण सड़क खुलने से पहले तथा मौजूदा सड़क सहित 5 चरणों में जो है वो किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं और ब्लैक स्पॉट में कमी, सुरक्षित सड़क अवसंरचना का विकास ऑडिट का उद्देश्य जो है वो सड़क के डिज़ाइन निर्माण और संचालन में मौजूदा खामियों की पहचान कर दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है। श्रोताओं जी बिल्कुल, कार्यक्रम आप सभी RJ सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और बिल्कुल जानकारियों का पिटारा, जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं यूं ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को सुनाएंगे हम ये प्यारा सा गीत आप सभी के वीडियो सेट पर। पिछला गीत हमने सुना श्रोतों, हाँ ये प्यारा सा गीत सुनाएंगे श्रोतों की जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा।

शोध एंड इक्यानवे दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से पुनः आप सभी श्रोताओं का। श्रोताओं आपसे ठीक 2 मिनट बाद यानी कि पूरे 7 बजे आप सुनेंगे समाचार रेडियो गुंजन धर्मशाला में। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें और जुड़े रहेगा वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ यूं ही इसी कदर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉर्टपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम जुआल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अंतराल के बाद। आप सभी ने ट्यून किया है वीडियो गुंजन धर्मशाला और मैं सचिन कपूर हूं आपके साथ आपके अपने वीडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को जानकारियों के पिटारे की ओर और रूबरू करवाते हैं आप सभी को इस जानकारी के साथ। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने श्रोताओं आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मिनी सचिवालय धर्मशाला में विकास कार्य एवं मानसून के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्य की विस्तृत समीक्षा बैठक की। श्रोताओं, बैठक में विशेष रूप से बौ क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद चल रहे राहत पुनर्वास और विकास कार्यों की प्रगति का आंकलन किया गया। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार बौ आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की जो है वो कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन 14 प्रभावित परिवारों को स्थायी आवास के लिए भूमि की आवश्यकता है उन्हें सरकारी भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। राजस्व विभाग को इस संबंध में सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। इसके तहत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7.50 लाख रुपया, घरेलू सामान के लिए 1.1 लाख रुपया, आर्थिक कुल 8.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त फसल, पशुधन, दुकानों तथा अन्य नुकसान के लिए भी विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बौ क्षेत्र के दौरे के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो है वो बौ क्षेत्र के दौरे के दौरान उनके महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है वो उन्होंने की है। इनमें बेघर परिवारों को सरकारी भूमि उपलब्ध करवाना, भी जो है वो श्रोताओं वो सड़क के सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जारी करना है और साथ ही साथ इसी तरह से जो है वो जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत।

बिल्कुल श्रोताओं, कि तुमको हमसे प्यार है या नहीं, कसम खा के कहो तो कह दीजिए कसम खा के है प्यार या नहीं। आप सभी ने फिलहाल ट्यून किया है 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत प्यारा संगीत आप सभी ने सुना श्रोताओं, कसम खा के कहो कि तुमको हमसे प्यार है या फिर नहीं है। दिल है तुम्हारा फिल्म से लिया गया ये गीत है श्रोताओं, और कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हमने सुना वीडियो सेट पर FM बैंड 91.2 MHz पर। कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम को लेके चलते हैं अब बिल्कुल अगली जानकारी की ओर। नगरोटा बगवा के पूर्व विधायक अरुण मेहरा ने जो है श्रोताओं प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि नगरोटा बगवा में लूटपाट और चोरियों का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो वह जो है वो थाने का घेराव करेंगे श्रोताओं। थाने और प्रशासनिक जी बिल्कुल घेराव जो है वो होगा, और घेराव जो है वो बड़ी मजबूती से होगा और मजबूर होकर होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस नेताओं की चक्री छोड़ कानून व्यवस्था के अपने मूल काम पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर थानों और पुलिस चौकियों में जो है वो पर्याप्त स्टाफ ना होने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थानीय नेतृत्व को भी लपेट में लिया श्रोताओं। उनका कहना था कि मौजूदा विधायक लोगों को गुमराह कर सस्ती लोकप्रियता बांट रहे हैं। भाजपा नेता ने नगरोटा बगवा में आयोजित होने वाले बाल मेला के रूप में निजी समारोह में सरकारी धन व विभागीय ऊर्जा के दुरुपयोग का आरोप लगाया श्रोताओं। उनका कहना है कि विकास के नाम पर नगरोटा बगवा में करोड़ों रुपए का दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है श्रोताओं, जिसका लाभ लोगों को कम और स्वयं और चहितों को अधिक पहुँचाया जा रहा है श्रोताओं। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं अपने अपने वीडियो सेट पर श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस

शोधो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना शोधो। फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से लिया गया था, और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना। आइए श्रोतों, जानकारियों का पिटारा जो है अब और ज़्यादा जो है वो खुलता जा रहा है, और श्रोतों सारी जानकारियाँ जो है वो आप तक पहुँचाई जा रही हैं। अगली जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है वो श्रोतों आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 4.50 लाख करोड़ रुपए के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी मंजूरी दी है। इसमें किसान से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अहम सर्किट्स शामिल हैं श्रोतों। केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ श्रोतों बड़ा फैसला है ये, सबसे बड़ा फैसला पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर है सबसे बड़ा फैसला श्रोतों। इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 30-31 तक जो है वो कर दिया गया है, इसे 30-31 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है श्रोतों। सभी किसानों के चेहरे पर जो है वो मुस्कान है इस वक्त। जी बिल्कुल, ये खबर सुनते ही सभी किसानों के चेहरे जो हैं वो बिल्कुल खिल चुके होंगे, बिल्कुल जो है वो उनका दिल इस समय बागम बाग जो है वो हो चुका होगा, क्योंकि श्रोतों 30-31 तक जो है वो एक्सटेंड कर दी है ये योजना। इसके लिए सरकार ने जो है वो 3.15 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा है श्रोतों। मतलब साफ है कि देश के करीब 9 करोड़ किसानों को अगले 5 सालों तक जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए सालाना 6,000 रुपये मिलता रहेगा। ये रकम 2,000 रुपये की 3 किस्तों में जो है वो मिलेगी श्रोतों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल की बुआई और कटाई के वक्त आर्थिक मदद देना है श्रोतों। इसके साथ ही पानी पर तैरने वाले सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। सरकार का मुख्य फोकस किसानों की आय बढ़ाने और क्लीन एनर्जी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने पर है श्रोतों। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का जो पिटारा है श्रोताओं वो यूं ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने पन की, और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोता।

Showtime FM मैलिक यानु दिशमलब है। 2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का भरपूर जानकारियों के साथ आप सभी को रूबरू करवाए श्रोताओं। हिमाचल से जुड़ी, हिमाचल के नेताओं से जुड़ी, मुख्यमंत्री से जुड़ी हो चाहे PM से जुड़ी, सभी जानकारियों के साथ जो है वो आप सभी को इस नाचीज रेडियो जो कि RJ सचिन कपूर ने जो है वो रूबरू करवाया है। तो अब हम उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर अंतराल का समय जो है वो हो जाता है श्रोताओं। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को छोटे से अंतराल की ओर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने।

0: चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
3: टेस्ट
2: टेस्ट
4: में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
8: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी।
9: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
10: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

तो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस समय सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, ये चीज लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर ये वीडियो गुंजन है और मैं हूँ सचिन कपूर, आपका अपना वीडियो दोस्त। तो चलिए श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और 7:46 हो गए हैं। अब वक्त हो चुका है रेडियो गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार से संपत्ति कमाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंबा में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य की संपदा को बचाने के लिए सत्ता में आई है। उन्होंने भाजपा के एक विधायक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR दर्ज करने को सही ठहराया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में उनके खिलाफ पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के

0: जो भी भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति है, चाहे वो कितने ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सरकार उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। रजनी पाटिल जी हमारी इंचार्ज है और ऐसी कोई रिपोर्ट की बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में चले हुए पर विश्वास करेगी तो इस पार्टी का भगवान ही मालिक है।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भाजपा विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर ऐसे सभी मामलों को पहले ही कैबिनेट में रद्द किया जाएगा।
2: हिमाचल प्रदेश में जब हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को लग रहा है, जब हम काम नहीं कर सकते, हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में जो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करता है उनकी आवाज को कैसे दबाया जाए, उस आवाज को कैसे बंद किया जाए, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है।
1: जयराम ठाकुर ने सरकार के इशारों पर गलत काम कर रहे अधिकारियों को चेतावनी दी कि प्रदेश में सरकार बदलने पर उनकी भी जवाबदेही तय होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी है और हाईकमान ने भी मुख्यमंत्री को अपनी कार्यशैली बदलने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और YouTube चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी लाश से 7 साल बाद व्यापार फिर से शुरू हो गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर के पुहु उपमंडल की सीमावर्ती पंचायत नमग्या में निर्मित 56 ट्रेडमार्ट का उद्घाटन किया और सीमा पार व्यापार आरंभ करने को हरी झंडी दिखाई। शिपकी लाश से ये व्यापार वर्ष 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद से बंद था। जगत सिंह नेगी ने इस मौके पर कहा कि शिपकीला से सीमा पार व्यापार आरंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पुहू व्यापार मंडल के अध्यक्ष हिशे नेगी की मांग पर उन्होंने कहा कि सीमा पार से आयात निर्यात वस्तुओं का दायरा बढ़ाने का मामला प्रदेश सरकार विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीन सरकार के साथ उठाएगी। उन्होंने व्यापारियों का आह्वान किया कि वे पारदर्शिता और नियमानुसार केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा तय आयात निर्यात वस्तुओं के नियमों का पालन करें। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विभाग पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के लिए नई नीति तैयार कर रहा है। इस नीति से भविष्य में पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें भी निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप हो सकेंगी। विक्रमादित्य सिंह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत धामी स्थित मिनी सचिवालय में जन शिकायतें सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों द्वारा निर्मित कई सड़कें विभागीय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि धामी क्षेत्र में सड़क, पेयजल और बिजली सुधार पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की ओर से कुल 67 समस्याएं रखी गई, जिनमें से 28 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। मंत्री ने शेष मामलों के शीघ्र निस्तारण के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का 18% शिक्षा पर खर्च कर रही है। रोहित ठाकुर ने आज केंद्रीय विद्यालय कोटखाई में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ आयोजित संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश

0: कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में शिक्षा विभाग में लगभग 15,000 पद खाली थे, जिनमें से लगभग 9,000 पदों को अभी तक भरा जा चुका है, जबकि 3,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति और शैक्षणिक सत्र का आरंभ क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने इस मौके पर DAV महाविद्यालय कोटखाई में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन भी किया। स्वास्थ्य मंत्री के चुनाव क्षेत्र सोलन में स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं सुधरने के चलते आम मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में सिर्फ एक ही पर्ची और फीस काउंटर होने के चलते लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इन मरीजों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी लाइनों की परवाह किए बिना अपनी जान पहचान वालों की सरेआम तरफदारी कर रहे हैं। इससे परेशान लोगों ने आज अस्पताल में हंगामा किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि अस्पताल में फीस और पर्चे काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए ताकि उन्हें लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सके। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा हुई। प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण 102 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार आगामी 7 अगस्त तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर वर्षा होगी। विभाग ने 2 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जबकि 3 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक। सत्र के दौरान होगी 10 बैठकें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भ्रष्टाचार से संपत्ति कमाने वालों को किसी भी हालत में नहीं बख्शेगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाया FIR के नाम पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। शिपकीला से 7 साल बाद फिर शुरू हुआ भारत और चीन के बीच व्यापार। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के लिए नई नीति तैयार करेगी सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए श्रोतों, कार्यक्रम से अब इजाज़त लेने का समय जो है वो हो चुका है और आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। श्रोतों यही कहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए और किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तय अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू ठीक किया है तूने,

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: टेस्ट
1: टेस्ट
2: टेस्ट।
3: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सब की तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे, अब इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
9: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
10: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

नमस्कार। 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिता के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। उद्योगों को बड़ी राहत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देगा वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र। सड़क की सुरक्षा जाँच के बिना नहीं चल सकेंगे वाहन। किसानों को अगले 5 वर्ष भी मिलती रहेगी पीएम सम्मान निधि। आवारा पशुओं से हादसे में पीड़ित परिवार को 15 लाख मुआवजा देने का आदेश। समुद्र मंथन करेगा भारत, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए 84,000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलने वाले सहमति प्रमाण पत्र की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के पंजीकृत उद्योगों को वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता उद्योग की श्रेणी के अनुसार 5 से 25 वर्ष तक रहेगी। इस व्यवस्था को लागू करने वाला हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बन गया है। साथ ही तय समय में प्रमाण पत्र जारी न होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के करीब 12,500 पंजीकृत उद्योगों को अब बार बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC या सहमति प्रमाण पत्र लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का उद्देश्य स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित सड़क अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ऑडिट नीति 2026 लागू कर दी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब विभाग के अधिकार क्षेत्र में बनने वाली सभी प्रमुख सड़कों और परियोजनाओं का विभिन्न चरणों में अनिवार्य रोड सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। बिना सुरक्षा जाँच के सड़क पर वाहन नहीं चल सकेंगे। सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से इसे लागू किया है। नई नीति के तहत सड़क परियोजनाओं का सुरक्षा ऑडिट योजना DPR निर्माण सड़क खोलने से पहले तथा मौजूदा सड़कों सहित 5 चरणों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति दी है। पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को पहले की तरह ही हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिलती रहेगी। इससे किसानों की खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, जोखिम कम होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने और आवारा पशुओं से संबंधित कानूनों को बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से ऐसी घटनाओं की रोकथाम और मुआवजे की व्यवस्था के लिए ठोस नीति बनाने को कहा है। दूरगामी प्रभाव वाला ये फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पंजाब के एक मामले में सुनाया। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण तेल गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के विशाल समुद्री क्षेत्र में तेल की तलाश करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी। इस योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत जलाशयों नहरों पर तैरती हुई सोलर परियोजनाओं का विकास होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम है। पथ परिवहन निगम के बस अड्डों और डिपो में इसी सप्ताह के हिम बस प्लस कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। निगम की ओर से इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन भी लोग कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग श्रेणियों में संचालित ग्रीन कार्ड येलो कार्ड और सम्मान कार्ड को एकीकृत कर हिम बस प्लस कार्ड शुरू करने का निर्णय लिया है। ये नया कार्ड मात्र 365 रुपए के वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध रहेगा। इन कार्डों में 5 से लेकर 15% की रियायत की जाएगी। कार्ड बनाने के लिए निगम की ओर से 1 महीने का समय दिया जाएगा। तोबरी में आज शाहपुर के विधायक एवं मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में भतेला एवं कशलोट पंचायत से संबंधित विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भदल्ला एवं तोतारानी में भूस्खलन, गतरी सड़क पर विद्युत तारों और पेड़ों से जुड़ी समस्याएं,
रेलगद्दी बस्ती संपर्क मार्ग, तोतारानी में एम्बुलेंस सड़क निर्माण, पंचायत घर निर्माण, चांदमारी में भूस्खलन से हुए नुकसान, बरनेट में शमशान घाट निर्माण तथा डेंजर जोन में आए घरों की सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। केवल सिंह पठानिया ने बताया कि दियाड़ा की वर्षों पुरानी सड़क की मांग को पूरा करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। विद्युत व्यवस्था में सुधार किया गया है। उनका कहना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो डल लेक में शीघ्र ही आरती शुरू की जाएगी। डल लेक का अपना धार्मिक एवं पर्यटन महत्व है और यहाँ वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित के कार्यों को सेवा भाव और प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए तथा बरसात के मौसम में लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने,

0: माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट
1: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
2: टेस्ट
3: टेस्टिंग
4: टेस्ट
2: टेस्ट
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
8: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
11: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
12: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने,

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
1: टेस्टिंग
2: टेस्ट
1: टेस्ट
2: टेस्ट।
3: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबके तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
9: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
10: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त मनीषा के साथ।

मनोरंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।